जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और अब चलते चलते खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज के गीत आपके दिल को सुकून और चेहरे को मुस्कुराहट दे गए होंगे। तो अपना और अपने मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि संगीत ही वो एहसास है जो दिलों को हमेशा करीब रखता है। तो चलिए सुनते हैं चलते चलते ये गीत, और सुरभि को दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकेंड हो रहे हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और अब जान लेते हैं आज के कार्यक्रमों का विवरण। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर होगा अंग्रेजी समाचार, 6:10 पर आप सुन सकते हैं अर्पण। सात बजकर दस मिनट का समय है गोल्ड सुप्रभात का।

म्यूजिकल दिल्ली की आप सुनेंगे 8:45 पर। दिल का मेलबॉक्स प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा।

11:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम तस्वीर, जो आधारित है एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्चर, भोजन, स्थान, यातायात पर। बारह बजकर दस मिनट का समय है एक कदम बुजुर्गों की ओर प्रोग्राम का।

1:10 होने के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। आज की कलाकार होंगी माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि 3:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन भावन। शाम 5:10 का समय है पानी पर लिखी कहानी। कहानी होगी जीत हौसलों की।

0: डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थि सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 38 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिमप्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतम् आभूषण निर्यातकाः शून्यशुल्केन असंस्कृत वस्तूनाम् अथवा निवेशसामग्रीणाम् आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5,00,000 टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय

विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पयामे सुबह अच्छे से तुहस मेज़बान सकीना तो मैसेज छे
1: महराज
0: तो बोलन वाले वनो के कंट्रोल रूमस मन विकनस सर्विन इंजीनियर साहिबान जावेद अहमद लोन तो मंजूर अहमद नजार। तो महराज क्या सोच रहे हैं आप?
1: बिल्कुल, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कि लाइव होता है पायाम सुबह, हम आपकी खिदमत में हैं। हम सामीन को ये बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम सुबह 7:10 से लेकर 11:30 तक चलता है। इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने सामीन को देते हैं।
0: बिल्कुल प्रदोष सुबह से हजर सप्दान बोजन वाले हिंदिस खदमत मस मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन तिमन से शेयर करान, तिमन कथन पर गौर फिक्र करने कोशिश करान, ये मसी दोह दिस जिंदगी मस द्रंट गसान छे।
1: बिल्कुल सकीना जी, कोशिश छ यही रोजान जे सानी सोसाइटी सानी समाज मस यस कमी या का खमी छ सो गसी दूर गसी।
0: बिल्कुल सही वनु ते महाराज, जिंदगी हुंत का ते शोभ अस्तन परफेक्ट तो मुकम्मल चुना आसान, वन गो यम ते लोग तत सित वाबस्ता आसान छे तिहस कोशिश गछ ये रोजन जे यस कम असी जिम छे सो गछ

0: में ये जो म्यूजिक है ये दावत देता है कि वो जो दौर था पुराना बहुत ही खूबसूरत था।
1: बिल्कुल
0: हम जब शहरों की बात
1: सही
0: करते
1: सही
0: हैं
1: सही
0: तो अच्छुबासान की ये टीचु क्या था,
1: बिल्कुल
0: मगर वक्त चुन सुवत मुत कि इंसान जो दपा दूर गसा
1: कुंजाए
0: तती त्रावा
1: बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही
0: तो मगर ये बात ये आप सुन लीजिए, आपको भी यही फील होगा जो हम महसूस कर रहे हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-11-2100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
11: जी हां समीन, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 203.5 MHz पर। मैं हूं आपका मेजबान मेराजुद्दीन और मेरे साथ है
12: जी बिल्कुल सकीना, और हम बात कर रहे थे, आज 15 मई है, आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है, और हमने ये कहा था कि आज का दिन आज के शो के थीम के साथ काफी रिलेट करता है, या कहिए कि बहुत हद तक रिलेट करता है,
11: बहुत गहरे तरीके से जुड़े,
12: बिल्कुल जुड़े हैं। आज का थीम होता है शो का मॉरल एजुकेशन, क्योंकि इंसान की पहली तरबियत, पहला अखलाक, पहली जबान और पहला रवैया सब कुछ खानदान से ही शुरू होता है।
11: बिल्कुल सकीना जी, हम अक्सर कहते हैं कि घर इंसान की पहली दरसगाह है,
12: बिल्कुल,
11: लेकिन शायद हम इस जुमले की गहराई पर कम गौर करते हैं।
12: सही कहा आपने, क्योंकि मॉरल एजुकेशन ये नहीं कि बच्चे को हम थैंक यू या सॉरी बोलना सिखाएं, अखलाकी तालीम दरअसल एहतराम, बर्दाश्त, सच्चाई, हमदर्दी, और बच्चे को ये बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
11: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सकीना जी, ये चीजें किताबों से ज्यादा माहौल से सीखी जाती हैं।
12: जी
11: देखिए, अगर घर में नरम लहजा हो, एक दूसरे की इज्जत हो, बड़ों का एहतराम हो, तो बच्चा वही कुछ सीखता है।
12: अब ये भी आप सुन लीजिए कि एक बच्चा बोलने से पहले घर का माहौल पढ़ना शुरू कर देता
11: बिल्कुल,
12: है।
11: बिल्कुल बिल्कुल,
12: वो अपने वालदेन के रवैये, बात करने का अंदाज, एहतराम, मोहब्बत और पेशेंस, जब हम कहते हैं ना कि सामने वाले में पेशेंस नहीं है, बच्चा ये है वो है, लेकिन वो वही कुछ ऑब्जर्व करता है जो वो देखता है।
11: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे सुनते हैं, जैसा कि आपने बोला है कि वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सुनते कम हैं
1: जी
0: लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, अगर वालिदैन गुस्से में चीख कर बात करें और फिर बच्चे से कहें कि तुम नरम लहजे में बोलो, तो देखते हैं ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
1: बिल्कुल, वो माहौल से ही सब कुछ सीखता है। तो यहाँ पे

0: सही
1: आता
0: सही
1: है,
0: सही बात है.
1: लेकिन फैमिली बॉन्ड जो हम जिक्र कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है.
0: बिल्कुल.
1: आप देखिए एक साथ इस वक्त मॉर्निंग में कितनी फैमिलीज इकट्ठे बैठे हुई है, चाय पी रहे
0: बहुत
1: हैं
0: कम
1: या
0: होंगे.
1: ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच में कितने एक साथ आप देख रहे हैं कि वो एक साथ बैठ के खाना नोश फरमाते हैं,
0: बिल्कुल.
1: या डिनर में कितने ऐसे लोग हैं जो एक साथ बैठ के
0: डिनर
1: गपशप करके
0: सही सही
1: अपना वो शाम का टाइम बिताते हैं.
0: सही सही
1: यूजुअली देखते हैं कि शाम के टाइम सभी एक घर में होते
0: सही
1: हैं,
0: सही
1: लेकिन अपने अपने कमरों में अपने अपने मोबाइल के साथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो फैमिली को जोड़े रखने की जब आप कोशिश करेंगे तभी रिश्ते मजबूत होंगे,
0: सही
1: हमदर्दी होगी, या बच्चे को जो आप कुछ सिखाना चाहते हैं उनमें जो कल के इनकम्प्लीट
0: इनकलकेट.
1: करके करना चाहते हैं वो तभी होगा जब एक साथ बैठा जाए
0: एक
1: या
0: साथ
1: एक साथ बात की
0: बिल्कुल
1: जाए.
0: बिल्कुल
1: तो हम तो यही चाहेंगे कि फैमिली बन के हम रहे
0: बिल्कुल
1: सारे.
0: बिल्कुल.
1: तो फिलहाल बातें मुझे
0: और भी
1: लगता है कि
0: होंगे.
1: और भी होंगी इस शो
0: बिल्कुल
1: में.
0: बिल्कुल.
1: फिलहाल एक कश्मीरी नगमा नसीमुल हक की आवाज में.

0: जी दोस्तों, ये थी नसीमुल हक की बेहतरीन आवाज। उम्मीद करते हैं कि ये कश्मीरी गीत आपने इंजॉय किया होगा, पसंद भी आया होगा। महराज, गर्मी अब दिन ब दिन बढ़ेगी,
1: जरूर
0: टेम्परेचर भी हाई होता रहेगा, तो ऐसी सूरत में हम चाहेंगे कि अपने लिसनर्स के साथ कुछ बातें शेयर की जाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि जिस्म हर कोई चाहता है कि हाइड्रेट रहे, लेकिन हाइड्रेट तभी रहेगा जब आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अक्सर ये होता है कि इंसान इस गर्मी के मौसम में थका हुआ और वो
1: बेसुकून
0: महसूस करता है, तो कुछ चीज़ें जो घर में ही मौजूद होती हैं लेकिन हमने देखा है कि उनका इस्तेमाल हमने बहुत कम कर
1: बहुत कम किया,
0: जैसे कि खीरा अक्सर दुकानों पे भी मौजूद रहता है, वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो आप कुछ बता रहे थे कि मुझे ये टिप शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, तो बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें 95% पानी होता है जो जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। इसे खाने से हाजिमा दुरुस्त रहता है और ताजगी महसूस होती है, इसे सलाद के तौर खाएं।
0: और अब जब खीरे का आपने जिक्र किया तो मार्केट में देखिए हर फैसिलिटी दस्तियाब है, जब हम सब्जियों की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, तो नारियल भी हमें इस वक्त नारियल पानी भी बहुत सारे लोग पीते हैं। ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जो बहुत ज्यादा पसीना निकलने की सूरत में जिस्म से खो जाने वाले जो मादनियात होते हैं उसकी कमी को पूरा करता है। ये जो शुगरी मशरूबात का बेहतरीन मुतबादल है, इसे पीने से जिस्म तवाना और चुस्त रहता है। अब यही है कि जो बच्चे हमारे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके स्टोमक के लिए बेहतर नहीं होता है। और यहाँ पे भी फैमिली पे ही बात आती है कि कुछ रवायती चीजें इसे इस ब्रो बनवा लो इससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसका भी इस्तेमाल बच्चों में कम हो गया है।
1: देखिए देखिए, दही की जब हम बात करेंगे, इसकी तासीर ठंडी होती है जो मादे की मजमूई सेहत के लिए मुफीद है। दही हजम दुरुस्त करता है, इसे ऐसे ही या रायते की शक्ल में खाएं। ख्याल रहे कि ये गर्म मौसम में जिस्म को सुकून बख्शने में भी मदद करता है।
0: देखिए सुकून की जब बात आती है तो हर कोई चाहता है कि समर में सुकून से ही रहे, बेहतर तरीके से रहे। और एक बात जो हमसे छूटी है वो है मट्टी के बर्तन। अब आप सोच रहे हैं कि मट्टी के बर्तन का जिक्र इसमें कैसे आया। देखिए मटके का पानी वो है कि मट्टी के बर्तन में जब जमा हम पानी करते हैं तो फ्रिज के बगैर कुदरती

0: तौर पर ठंडा होता है। ये न
1: बिल्कुल
0: सिर्फ जिस्म को तरोताजा करता है बल्कि मट्टी का जो लतीफ जायका भी इसमें शामिल होता है, अलग उसमें वो कसौंदी महक
1: सही,
0: होती
1: सही,
0: है
1: सही।
0: और मुतवाजन दर्जा हरारत को बरकरार रखने में भी ये मदद फराहम करता है। बेले सिचुवनान के क्राल कम गई काम यम कतरे बान गए काम तो कुतो जान गयो कि अगर सिमन चीजों ने इस्तेमाल कर हो नोट अनह या दौद जवरान खतर इस वर्त अनह तो ये कार ते पक है।
1: बिल्कुल सकीना जी अत मुतलिक करो बीते कत पाया में सुबह प्रोग्राम चुती विंकिनस लाइव बोजान असित तो विंकिनस बजे 7:35 मैं बसा इस बोजो गट कशन खबरन हन बुलेटिन।
0: बिल्कुल सही
2: ये छे आकाशवाणी सुबह 7:05 सपद खबर नाम हूस बह तजम्मुल अहमद गोड अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत भारत के सदारत मज ब्रिक्स मकसद सारे हिंद शमूलियत वोल आलमी निजाम। चुनाव कमीशन ऐलान कर्मुत शुरहन रियासतन तो मरकज कन जेर इंतजाम त्रेन इलाकन मपद वोटर फहरिस्तन हजि खसूसी नजरसानी हंद त्रम मरहल शुरू। कांग्रेस लीडर वी डी साथी सानन चु केरलमस मज हकूमत तश्कील दिन बाप दावा पेश कर्मुत उत्तर प्रदेश मज रूद पेन वा वथन बे त्रट पेन किन सतत खोत ज्यादा नफर अजान सपद मत। खबर तफसील सान वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत यूस कर ब्रिक्स भारत के सदारत मज कसीर सती निजाम मजबूत तो कर पोशवन तरक्की वतबो दिन इकतसदी मजाहमत बढ़ा बे मजीद शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील बापत रलित मिलित काम। नई दिल मज रात वजीर अजम नरेंद्र मोदी सत मुलाकात करने आमतन ब्रिक्स मुल्क हंदन खर्ज वजीरन तो वफदन हंदन सरबराहन सत कत करान वन वजीर अजमन जतलवन मीशतन दरमियान अथवास हुर्रावन तो ग्लोबल साउथ कन उमंगन आवाज दिन बापत चु ब्रिक्स अक अहम प्लेटफार्म बनित वतलोमुत। अमे ब्रोह वन ब्रिक्स खर्ज वजीरन हज मीटिंग दौरान इफ्तिताही कलमातन अंदर खर्ज वजीर डॉक्टर एस जे शंकरन अमन तो सलामती गजे आलमी निजामस मज मरकजी हैसियत हासिल करें। तमो वोन हाल क्यों तनाजु सच मुजाकरात तो सफारतकारी हज अहमियत वतलान तमो वोन जोर दिथ आजकल जारी तनाज इकतसदी गैर यकीनी हुन सूरत हाल तो तिजारत टेक्नोलॉजी बेई आबहवस मुतलिक चैलेंज अकिस नवी आलमी मंजरनामा शक्ल सूरत दिवान तो अमे नवीयत तवक्कात हुरान ज ब्रिक्स कर अत सिलसिलस मज अक तमीरी तो इस्तेहकाम अता करन वोल किरदार अदा। भारतीय चुनाव कमीशन ऐलान कर्मुत वोटर फहरिस्तन हज खसूसी नजरसानी हुंद त्रेम मरहल यी जल्दी शुरू करन ये एस आई आर ये शुरहन रियासतन तो त्रेन मरकजी इंतजाम वाले इलाकन मज मुनद कर अत मरहलस मज रियासत शामिल है तिमन अंदर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हरियाणा झारखंड कर्नाटक महाराष्ट्र तो उत्तराखंड शामिल। इमन मरकजी इंतजाम वाले इलाकन हंद अत मरहलस मज अहात कर तिमन मज दिल्ली NCR चंडीगढ़ दादर नगर हवेली बे दमन तो दीव शामिल। एस आई आर किस त्रेमिस मरहलस मज कर 3,94,000 खोत ज्यादा बूथ लेवल अफसर 6,63,00,000 वोटरन हुंद घर गचित तिमन मुतलिक मौलूमात हासिल। पनिन मौलूमात पान फराहम करने किस मरहलस दौरान करन CAC पार्टियो दिस मुकर्रर करने आमित 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट तिमन मदद। SIR किस त्रेमिस मरहलस में छुन हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तो लद्दाख शामिल। इमन इलाकन मज यी मरदमशुमारी हुंद दोयम मरहल खत्म सपदन तो बालई इलाकन मज मौसमी सूरत हाल पे गौर फिक्र कर पत SIR ऐलान कर। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान तुल रात शुपियन साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग 2017 पन्नस खिताबस मज वोन तिमो जे खेल सरगर्मी चे नौजवानन पन्ने सलाहियत ब्रोह कुन अन्नुक मौक फराहम करान। LGN वोन जे नौजवान गचन तमीरी सरगर्मियन कुन रागिब करने युत तिमन अंदर कौम के तमीरुक जज्ब पद सपदे। तिमो वोन जे ये वॉलीबॉल लीग छे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस कामयाब बनावनस मज अक अहम किरदार अदा करन वाजिन।
3: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ

0: संदेश है कि हमारे नौजवान अब मैदान के बाहर खड़े होकर दर्शक नहीं बने रहेंगे बल्कि खुद अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। चार दिनों के इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर लगने वाला हर सर्व, हर स्पाइक और हर डाइव इस बात का ऐलान है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा तरक्की की राह में चुनौतियों का मुकाबला कर रही है और वह देश की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बनकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि टैलेंट को निखारने में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स काउंसिल को कामयाबी हासिल हुई है और ये लीग एक नए स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने में जरूर मदद करेगा।
1: मनोज सिन्हान कोर जिले के आड़होम इलाकस मज चोर करोर तो चुनमत लक्ष रुपये लागत से तैमीर करना आमुत कसीरुल मकसद इंडोर स्पोर्ट्स हाल लुकन वक्फ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कोर कुपवार जिले के टंगडार करनाहस मज एस एम हिलस पे शौर्य गाथा कम्प्लेक्स इफ्तिता। अत मौक पे वो तमो जी यह संग मील चु बैटल फील्ड टूरिजमस वथवाशर दिन बापत सठा अहमियत थावान। मनोज सिन्हान वोन जे इथो इकदाम सी सकाफती वर्सस तहफुज मिलान चु तचे सरहदी इलाकन हज तरक्की ती यकीनी बनान।
2: भारत की सैन्य विरासत वीरता की गाथा है, उसे शब्दों में बयां करना ये थोड़ा कठिन काम। लंबे समय तक वो कहानियाँ आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती थी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है, इसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटल फील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा।
1: ये मैं खबर छू तु आकाशवाणी पर बोजान। केरलामस मज कोर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी रात तिरुवनंतपुरम अंदर सपदेम मीटिंग दौरान वीडी साथी सान बाकायद पट पन लीडर मुंतखब। वन जे पार्टी हंद लीडर रमेश चनीथाला ओस न मीटिंग मज मौजूद। पत को रात शामस वीडी साथी सानन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सत मुलाकात तो कोरुख तिमन ब्रोह कने रियासत अंदर नव सरकार तश्कील दिनस मुतलिक दावा पेश। चूरम मई चुनाव नतीजे इन पत रोज पतम दहन दोहन दौरान दिल तो तिरुवनंतपुरम मज मीटिंग लगातार सपदान यम पत रात लेजिस्लेचर पार्टी सरबरा सिंद नावक ऐलान करना आव। कांग्रेस तो इतिहादी जमात से वन नई बनन वाजन काबीना बापत वजीरन हंदिस बारस मज खयाल बावत करान। उत्तर प्रदेश मजि पतम शेत्रहन घंटन दौरान रूद तूफान तो त्रट पेन कि सत्त खोत ज्यादा नफर जान सपदम। वजीर अला योगी आदित्यनाथन चु जिला मजिस्ट्रेटन तो बाकी हकमन हुकुम दुत जम कर मुतासर इलाकन अंदर नुकसान मुतलिक सर्वे शुरू। तमो यह हुकुम तुत जम कर फी त्रेय घंटे पत मुआवजा फराहम कर सूरत हाल मुतलिक तम अपडेट फराहम। करीब हथ किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकन वाले तेज हवा सति बार तबाही सपजम। रियासत अंदर चे रेल सर्विस त पटर पे कुल वस पेन कि मुतासर सपजम। बारिश तो लछ तूफान सत फसलन तार नुकसान सपदम ये जन मकानन तो बाकी इमारतन तार नुकसान वोतमुत। अत दौरान मुतासर इलाकन अंदर बिजली सप्लाई तो मुतासर सपजम। मुतासर लूक नन्सी नबस पनह नित सारे खोत ज्यादा मुतासर इलाकन मज प्रयागराज बिदोही मिर्जापुर फतेहपुर तो वाराणसी शामिल। प्रयागराज मज अकवु नफर मार सपदम ये जन बिदोही मज पंदा मिर्जापुर मज अरदा फतेहपुर मज नौ बिदायूनस मज पांच तो बरेली मज चोर नफर मार गमत। अत दौरान चे दोन हतन नफरन हंदे जख्मी सपदन खबर। जम्मू कश्मीर च वजीर तालीम सकीना इतोहन वोनमुत सरकार जम्मू कश्मीर मज तलीमी मंजरनामस तो अथ सेक्टरस अंदर बुनियादी ढांचस मजीद वथवाशर दिन वाद बंद। इन कथन हंद इजहार कोर तमो गांधी नगर जम रात गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नाव तब्दील कर सिलसिलस मज मुनद अकिस तकरीब खिताब करनस दौरान।
3: आज हमारी कोशिश है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां तक हम ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स को तैनात कर सके, चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर हो उसमें भी लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों को मिलके सरकारी या प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमें मिलके ये काम करना है ताकि जम्मू कश्मीर के ऐसे इदारे बन सके जहाँ से हम बेहतर से बेहतर तालीम अपने बच्चों को दे सके और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने कानून पे खड़ा हो।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 में।

रात 9:30 पर सेहत से मुतलिक। जी हाँ सामीन, आपको तफसील बताते हैं आज हमारे यहाँ से नशर होने वाले खास प्रोग्रामों की। रात 9:30 पर सेहत से मुतलिक फोन इन प्रोग्राम पेश होगा हेलो रेडियो क्लिनिक। शब 10:30 पर आप कश्मीरी नातिया कवाली सुनेंगे।

सुबह 8:15 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा आयुष सेहतुक जमीन। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफ़र ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। आज के प्रोग्राम का मौजू है तोहमत लगाने की सज़ा। मुकर्रर है मौलाना फैयाज अहमद जर्रू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपड़ा।

इंटरैक्टिव लाइव शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। मंजूर अहमद शाह और साथी छकरी और रोह में कलामे शाहबाज हाकबारी पेश करेंगे सुबह 11:30 पर और कलामे गुलाम रसूल आखून दिन में 2:30 पर।

एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम आप सुनेंगे 4 बजे। पंजाबी प्रोग्राम पेश होगा 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नश्र होता है शाम 5 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं।

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं।

0: जिनमें सोना, पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की

0: सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
1: फरत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जेंड के बवासात जिला ऑफिसर आयुष पुलवामा छु नेशनल आयुष मिशन किस IEC कंपोनेंट तहत प्रोग्राम पेश करान आयुष सेहतुक जमीन।

0: खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की ज़ेरे सदारत ब्रिक्स एक ज़्यादा शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सेंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इकतसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों मुमालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तशदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकत दारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इकतसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फ़रोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी

0: इस्तेहकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपये 77 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106 रुपये 68 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की 93 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108 रुपये 74 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल 95 रुपये 13 पैसे हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाज़त देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाज़तनामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
1: DGFT ने पहली दफ़ा दरख्वास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नज़रसानी शुदा मुसव्वदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तिजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटी माइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज़ बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नज़रअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला N. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के

0: नौ बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, प्याजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
3: सामीन, आज जुमतुल मुबारक है। साल 2026 की मई महीने की 15 तारीख मुताबिक 27 जीकदह 1447 हिजरी। श्रीनगर से आज शाये होने वाले उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान मेराजुद्दीन और मेरे साथ है
4: जी दोस्तों, मैं हूं सकीना। तो शुरुआत करते हैं इस शह सुर्खी से। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इस पार अमन, खुशहाली और तेज तरक्की का मुशाहिदा, उस पार लोग नजरअंदाज और गलत हुक्मरानी का शिकार।
3: मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है और इसकी सुर्खी है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हजरतबल की अपग्रेडेशन की मंजूरी, नया ब्लड बैंक, जदीद ऑपरेटिंग थिएटर्स, हाई केयर यूनिट्स, अमराज कलब, गाइनी पीडियाट्रिक्स मराकज का इंतजाम, वजीर आला।
4: एक और उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि पुलिस मुआशरे से नारकोटिक्स नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, अनंतनाग के लारनू में मनशियात फरोशों के गैर कानूनी ढांचे को मिसमार कर दिया गया।
3: जम्मू कश्मीर में अभी ऑनलाइन तालीम पर नौबत नहीं आई, सकीना इत्तू, फिजिकल क्लासेस मुअत्तल करने की कोई तजवीज भी जैरिगौर नहीं है।
4: मनशियात के हवाले से ही एक और रोजनामे की शह सुर्खी है कि 2023 से 42 करोड़ मालियत की 97 जायदादें कुर्क, 15 करोड़ मालियत की 41 जायदादें मिसमार, पाकिस्तानी इमदाद याफ्ता दहशतगर्दी और मनशियात दहंदा सबसे बड़ा खतरा, 724 एनडीपीएस मुकदमात में मुलविस, 806 अफराद गिरफ्तार, डीजीपी नलिन प्रभात, 4962 किलोग्राम मनशियात और 6493 यूनिट्स साइकोट्रॉपिक तल्फ, 151 दवा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई।
3: एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है
4: जी,
3: सैलाब हों जलजले हों तूफानी हवाएं हों या हीट वेव्स, खतरनाक मौसमी हालात से निमटने के लिए खसूसी मंसूबा तैयार, वजीर दाखला।
4: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि कुवैत में जामबहक, पुंछ और राजौरी के 6 रिहायशी लाशों की वापसी के लिए सहूलत फराहम, वजीर आला ने किया वजीर खारजा एस जे शंकर का शुक्रिया।
3: जी, खाने पीने की गैर मायारी चीजों का पता लगाने के लिए तफ्तीशी कमेटियां, चेकिंग मुहिम को 7 दिनों के अंदर अंदर शुरू करने की हिदायत जारी।
4: वजीर आला उमर अब्दुल्ला की कयादत में काबीना ने बफर जोन जवाबित के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हजरतबल को अपग्रेड करने की मंजूरी।

0: अस्पताल हजरतबल को अपग्रेड करने की मंजूरी दी। सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और मरीजों की निगहदाश्त बेहतर बनाने का फैसला अहम करार।
1: जी, दिल्ली लाल किला धमाका केस में 10 मुलजमों के खिलाफ चार्जशीट कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से दाखिल कर दी गई।
0: उर्दू रोजनामे की शसुर्खी है कि सोपोर पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में सरगरम मुबैना दहशतगर्द हैंडलर की 20 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त।
1: समीन सुर्खियां आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। बाकी सुर्खियों से पहले चंद तिजारती पैगाम।
2: है काका सुको तो ये ब्रश कटर है दाम
3: अदा क्या हुआ नहीं या दबियो हम शेयर नहीं नियो
2: हाय खुदा तमी वीज वनियो मैं सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार अनु होंडा ब्रश कटर या ची लोकल दहन ब्रश कटरन बराबर ना तो मानते म्यों सिनी ये ब्रश कटर जेके स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर वाले निश
3: बुतहा उसस ती सोचा दपाना तच एक्सचेंज मोल चलान छुना सला बुति में तिमन प्रोन ब्रश कटर त एक्सचेंज स्कीम तहत हम नो होंडा ब्रश कटर
2: वार कार वो क्या गो जान
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
6: पर क्या कर सकते हैं?
5: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
7: आओ चलें और एक नया रास्ता चुनें, जिंदगी की असली पहचान बचाएं और बनाएं नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
8: दुमया भोजाना तुम क्यों बन स्टोर मेषर खर जमा कर ब्रश कटर दवा मोटर आब मोटर
9: यम खराब गुम अठ सा रुपये लगान शेरन वह कनो शेषर वर्स अद यपोर शेषर वोल
8: गुना पन शेषर वलिस क्या दू यम सारी जे के स्टेशनरस वाल एक्सचेंज स्कीम चलान योर निक प्रण तौर अनक नई ब्रश कटर दवा मोटर आब मोटर
9: रब करोराइज डीलर जे के स्टेशनरस मौलाना आजाद रोड
0: सुर्खियों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
1: समीन, एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, 9 जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस गाड़ियों की कमी, कुल 41 गाड़ियों में 2 बेकार, 1 जैर मरम्मत और 1 में तिब्बी आलात का फुकदान।
0: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोपियां में साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग 2026 का किया अफ्तताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरहमा में कसीरुल मकासिद स्पोर्ट्स इंडोर हॉल भी नौजवानों के लिए वक्फ किया।
1: अच्छन में मौजूद हजारों टन कचरे के पहाड़, 361 करोड़ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी।
0: कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्ज संभालने के बाद महकमे के ड्रग एंड फूड विंग के सीनियर अफसरान और फील्ड अहदेदारों के साथ एक तारुफी मीटिंग की।
1: उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से भारी तबाही, मुख्तलिफ अजला में 96 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी।
0: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि बानीपुरा में नशा मुक्त जैन के अभियान के तहत बड़े पैमाने पर बेदारी की सरगर्मियां जारी।
1: आखिर पर खेल सफे से ये सुर्खी के वर्ल्ड कप 2026 एरोजोना का शहर टोसान ईरानी फुटबॉल टीम की मेजबानी के लिए तैयार। सामिन, ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

0: तो एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर। कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: जी सामीन, पाया में सुबह जा रही हैं, आइए अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल।
2: जी दोस्तों, आवाज है आबिदा परवीन की।

जी हाँ सामीन, आप सुन रहे हैं इस वक्त लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। यह पायाम सुबह प्रोग्राम हर रोज सुबह 7:10 से लेकर 11:30 तक चलता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने सामीन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाए जिसका वो हक रखते

0: नहीं सुनने का। मेरे साथ है मेरे साथी
1: सकीना जी। आपने बहुत अच्छी बात की जिसका वो हक रखते हैं हर इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जिससे हमारे लिसनर्स को फायदा पहुंचे वो इन्फॉर्मेशन हम दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। और अपने दोस्तों को ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी आबी नकलो हमल खिदमात शुरू होने जा रही है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तो इसी हवाले से अपने श्रीनगर के नुमाइंदे इमरान नायकू से डिटेल में जानना चाहेंगे इस इनलैंड वाटरवेज के हवाले से या आबी ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं। हेलो
2: जी
1: इमरान, बताइए पूरी डिटेल जो ये आबी इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए कल पेशरफ्त हुई, मीटिंग हुई, तफसीलात क्या है, डिटेल में बताइए।
2: जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जल्द ही इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी आबी नकलो हमल खिदमात शुरू होने जा रही है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने गुज़िश्ता रोज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट महकम के साथ जारी मंसूबों और पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में जम्मू कश्मीर की बड़ी नदियों में माहौल दोस्त जदीद और पायदार आबी ट्रांसपोर्ट निजाम के कयाम, क्रूज टूरिज्म, शहरी आबी नकलो हमल और नेशनल वाटरवेज नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल से मुतालिक मसाइल पर भी ज़ेर गौर आए, जिनमें पुलों के नीचे मौजूद पॉफर डैम्स को हटाना, बिजली की एसटी और एलटी लाइनों को बुलंद करना, टर्मिनल्स पर बिजली और पानी की फराहमी, राबता सड़कों की तामीर, सीवरेज ट्रीटमेंट सहूलियात और तामीराती इजाजतनामे शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इनलैंड वाटरवेज में सियाहत, रोजगार और मस्जिद के लिए बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं, और उन्होंने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए IWAI के साथ करीबी तालमेल रखा जाए। इजलास में बताया गया कि दरियाए जहलम पर नेशनल वाटरवेज 49 के तहत पांथा चौक से वुलर झील तक तकरीबन 76 किलोमीटर तवील रिवर क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत जैलम किनारे 8 फ्लोटिंग जेटीज तामीर की जा रही हैं, जिनकी तकमील जुलाई 2026 तक मुतवक्का है, जबकि मुतालिका जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर जुलाई 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। नेविगेशन सिस्टम और आलात की तंसीब भी जुलाई 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। इजलास में मजीद कहा गया है कि जहलम में महफूज और मुसलसल किश्ती रानी के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत मुश्तरका तौर पर ड्रेजर्स के जरिए दरिया की सफाई और गहराई बरकरार रखने का काम कर रहे हैं, और IWI की जानिब से 20 मुसाफिरों की गुंजाइश खरीदने, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स रखने वाले 10 का अमल भी जारी है। इन किश्तियों का कॉन्ट्रैक्ट मई 2026 तक देने और मार्च 2027 तक इनकी फराहमी मुतवक्का है। जम्मू खिते में दरियाए जहलम पर नेशनल वाटरवेज 26 के तहत रियासी से अखनूर पोर्ट तक तकरीबन 9 किलोमीटर तवील क्रूज टूरिज्म कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस मनसूबे के तहत 2 जटीज की तामीर का काम अलाट किया जा चुका है, जिसे जुलाई 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ है। इसी तरह दरियाई रावी पर नेशनल वाटरवेज 84 के तहत जम्मू के सोहिर इलाके में 15 किलोमीटर तवील रिवर क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यहां जट्टी की तामीर का काम शुरू हो चुका है, जबकि नेविगेशन सिस्टम की तंसीब दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने की मंसूबा बंदी है। इजलास में बताया गया कि मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 11 अराजी के टुकड़ों की निशानदेही की जा चुकी है और इनकी मंजूरी व मुंतकली का अमल मुख्तलिफ मरहल में जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने जोर दिया कि आबी ट्रांसपोर्ट निजाम को सियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मरबूत किया जाए और इस दौरान दरियाओं के कुदरती माहौल और माहौलियाती हसासियत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाए।
1: शुक्रिया इमरान नायकू, आपका बहुत बहुत इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने जानकारी दी, पूरी तफसील आपने बताई। ये एक खुशाइंद कदम है, हम चाहेंगे कि इसको अमली जामा जल्दी पहनाया जाए, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है अभी भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब हम आए दिन देखते हैं कि तेल की किल्लत महसूस हो रही है, ऐसा न हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
4: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर।
3: अब एक नए अंदाज

0: शुभ मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
1: पयामे शुभ।
2: शाद मौला करिए खुदा।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: यह आकाशवाणी श्रीनगर है, 9:20 हो रहे हैं। आइए अब खबरें सुनते हैं।
5: आदाब, ये छे आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:20 सपद मुजम्मिल कम्बे बोजनावे खबर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी छे अजकी पेठ पांचन मुल्कन मुतहद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे तो इटली हिंदिस शन दोहन हिंदिस दौरस पेठ रवान सपदान। दौर किस गोडनिकिस पड़ावस मज वातन तिम आज मुतहद अरब अमारात, ये तिम तत के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहानस सीत मुलाकात करन। दोशवई लीडर करन मुख्तलिफ शोबन अंदर शिरकत ब्रोह पकनान सीत सीत अलाकई बमई बैनुल अक्वमी मामलन पेट ख्याल बावत। ऐ दौरान छु वजीर अजमन वोनमुत जे भारत चे चेयरमैनशिप मंज दिन ब्रिक्स यकवट सपदित पोशवन तरक्की वुजार, मईशत करन जूजत फराहम तो अख शमूलियती वर्ल्ड आर्डर बनानस खतर करन कम। नवि दिल्ली ब्रिक्स मुल्कन हंदन खर्जी वजीरन क्यों वफदन हंदन सरबराहन सीत मुलाकातस दौरान वन वजीर अजम नरेंद्र मोदियन जे ब्रिक्स शे वतलवनिन मईशतन मंज अथवास हुर्रावन तो ग्लोबल साउथ किन उमेजन नो तरह दिन बापत अख कारगर प्लेटफार्म। तेल कंपनियों छु आलमी सुतरस पेट खाम तेल किन निरखन मंज हुरर सपदन किन पेट्रोल तो डीजल कीमत 3 रुपये फी लीटर बढ़ावन फैसल नमुत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंदिस कयादतस मंज आई जम्मू कश्मीर के नौजवानन बापत अख मजबूत बुनियाद तैयार करन, युत तिम पन्नन ख्वाबन हुंद रुत तबीर कड़न सीत सीत कौमी तो आलमी सुतरस पेट गिंदन मुकाबलन मंज पन्नी कारगर सलाहियत हवित हेकन। शुपियन साउथ कश्मीर वाली बाल लीग 2017 तुलन पत वोन एल जी एन जो गिंदन द्रोकनिको मुकाबलो सीत मेले नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस जूजत तो नौजवानन हुंद जहनी बमई जिस्मानी सेहत ते बने जबर।
6: यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि एक संदेश है कि हमारे नौजवान अब मैदान के बाहर खड़े होकर दर्शक नहीं बने रहेंगे बल्कि खुद अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। 4 दिनों के इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर लगने वाला हर सर्व, हर स्पाइक और हर डाइव इस बात का ऐलान है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा तरक्की की राह में चुनौतियों का मुकाबला कर रही है और वह देश की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बनकर आगे बढ़ रहे हैं।
5: तकरीब पे खेलन हंद वजीर सतीश शर्मा, MLA शुपियन शबीर अहमद कुल्ले, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जुनूबी कशीर हंद DIG जावेद इकबाल मुतू, शुपियन जिले तरकियती कमिश्नर शिशिर गुप्ता, SSP शुपियन मुश्ताक अहमद चौधरी तो सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल मौजूद। पुंछ बेच क्यों शेयो ट्रेनी IS अफसरन हंद एक ग्रुपन कुर रात राजभवन श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सीत मुलाकात कर्क जम्मू कश्मीरस मंज तरबियतस दौरान पन्नन तजरुबन मुतलिक LGS सीत ख्याल बावत। फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हिंद सेक्रेटरी जनरल आनंद स्वरूप तमखे LG मनोज सिन्हास ए दौरान कुर कंगन हल्के के मेंबर असेंबली मियां महर अलियन ते लेफ्टिनेंट गवर्नर सीत मुलाकात तो कुरु कहिया मामलन पेट तिमन सीत तबूदलई ख्याल। वजीर अला उमर अब्दुल्ला सिंह कयादत वल वजारती काउंसिलन छे जिला अस्पताल हजरत बलुक दर्ज हुर्रावनस तो यह मुकम्मल करनस मंजूरी दिसमस। ए दौरान दिस वजारती काउंसिलन अच्छन श्रीनगर 368 करोड़ रुपये लागत सीत अख मरबूत 800 TPD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कायम करनस ते मंजूरी। जम्मू कश्मीर किन डिग्री कॉलेजन अंदर छे 4 वर्यन हंदन अंडर ग्रेजुएट कोर्सन तो 5 वर्यन हंदन इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामन मज दाखिल निन बापत अमल शुरू सपजमज अत मुतलिक तफसील दिवान वन जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीरन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगरस।
7: मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें JKAdmissions.in और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27th, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार, एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं।

0: पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अनंतनाग में कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 लाख रुपए मालियत की 8 गाड़ियों को अटैच कर दिया है। पुलिस ने इसी तरह बडगाम के चाडोरा इलाके में गैरकानूनी तौर काश्त की जा रही खशकाश को तबाह कर दिया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा और ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान एमजी नरेगा के तहत दरदस्त लिए गए आपपाशी कोहलों और छोटे आपपाशी प्रोजेक्टों की अमलावरी और सफाई के काम का जायजा लिया। वज़रा ने मुतलक अफसरों को हिदायत दी कि वो इल्तवा में पड़े तमाम कामों को मैयादबंद मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें ताकि आने वाले ज़रई मौसम में किसानों को आपपाशी की बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो सके। राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले 14 बरस की उम्र के मोहम्मद यासिर जम्मू कश्मीर के पहले बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने चैंपियनशिप के फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दी। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
1: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
2: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर,
1: अब एक नए अंदाज में।
3: बाग लगे इस आंगन को।
2: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
1: पयामे सुबह।
3: शाद मौला करिए खुदा।
1: मॉर्निंग लाइव शो
2: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: पयामे सुबह।
4: लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह विकनस बोजान सकीना जी सानी कशीर मन छे वारिया तिम मर्मिन शायर यमो पन्ने कलाम सती पन्नो लफ्जो सती सानिनन हिंद दिल रंजने।
5: बेशक, बिल्कुल सही।
4: वन चूंकि आज जुमतुल मुबारक
5: सही
4: कह नातिया कलाम करो पेश। नात लेखन या तारीफ करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद ये छन कह मामूली कथा।
5: बेशक, अगर समंदरन मील ही करन तो कुलन कलम यन करन तो पतिन लेखन तारीफ आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काम। यु नजरान अकीदत लिखमुत बशीर अरिफ सबन अत आवाज दिसम गुलजार अहमद गनई तो सो करो वनस ये बोजन वाले हंद खतर पेश।
4: बिल्कुल।

0: अजली नूरानुक शहर नबी साहब। दोस्तों, ये थकुन लायक या ये मर मंद कलाम बुजू तय शेरस बशीर अरिफ साहब तो फनकार गुलजार अहमद गनई तिंद सी बोजन वाल वनो ये सानि वादी योदव यह शरफ हासिल ये बिस्यार शेर तो कलमकार थन पेम तखरस लायक आकाशवाणी श्रीनगर से आये यथि कह फनकार तो कलमकार बागे यमो पन नाव वारिया कम वक्त मज नोन कोड
1: सकीना जी युथ हो नाव अब्दुल अहद फरहाद
0: बेशक बेशक
1: ब्रॉडकास्टिंग अलावा फरहाद जान कलमकार।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तस्वीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश शब्दान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम प्रत्येक दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे।

0: 10:30 हो रहे हैं, वक्त हो रहा है लाइव शो इंटरैक्टिव का। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान हैं सफीना मुख्तियार जी, जो स्टूडियो में आ चुकी हैं, और इनके साथ हम कलाम हो रही है मेरी साथी सकीना।
1: शुक्रिया बहुत बहुत फातिमा आपका इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वैसे आप भी नशियात में हमारे साथ शामिल हैं, तो दोस्तों को बता दें कि सुबह से हम आपसे बतिया रहे हैं, और ये भी आप सभी जानते हैं आपके आज है इंटरनेशनल फैमिली डे। तो ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जब हम फैमिली की बात करते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि फैमिलीज की हालत क्या है। तो हमने मुनासिब समझा एक बावकार खातून, एक सुलझी हुई खातून को मदु किया जाए। सफीना मुख्तार, जैसे कि फातिमा ने पहले ही कहा, एक सोशल वर्कर, हाउसवाइफ ये भी कह सकते हैं, बिजनेस वुमन ये भी कह सकते हैं, बेटी, बीवी, बहू, माँ और दादी, इन्होंने हर दौर को देखा है, हर रिश्ते को परखा है, हर रिश्ते के साथ डील किया है। क्या पाया, क्या नहीं पाया, इन्हीं से जानेंगे। पहले तमाम दोस्तों को मैं ये बता दूं, चंद दिन कबल मैं जब समीना जी के पास डिस्कस कर रही थी अपना शो गेस्ट के बारे में, ये वसूख से मैं कह सकती हूँ कि अगर आपके जहन में कुछ होता है तो आप, जाहिर सी बात है, अपने बॉस से शेयर करेंगे। तो मैं समीना जी के पास गई, तो जब मैंने समीना जी की बातें सुनी, इनकी गुफ्तगु सुनी समीना जी के साथ, एक दिल को वो बातें छू गई। फैमिली पे बात हो रही थी, जो मेरे जहन में था मैंने वो एक तरफ करके झट से मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा, समीना जी, आज के जो गेस्ट के बारे में मैं आपसे शेयर करने आई थी आज के शो के लिए, मुझे लगता है कि मुझे सफीना मुख्तार जी को उस शो में लेना चाहिए। उनने झट से हामी भरी, और उसी टाइम में डिसाइड हुआ कि सफीना मुख्तार से हम बात करेंगे इंटरनेशनल फैमिली डे के बारे में। अब चूंकि उन्हें हर एक फेज देखा है लाइफ का, इनका शो में हम पहले वेलकम करेंगे। सफीना जी, आपका तहे दिल से आज के शो में वेलकम है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, लेकिन आपने सच कहा कि मैंने जिंदगी का हर दौर देखा है
1: जी। इससे पहले कि सफीना जी, हम आपसे ये जाने कि जदीद दौर में खानदान जो है या खानदानी अकदार है, उन्हें कैसे बरकरार रखा जाए, ये मेन प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि खानदानी जिंदगी और काम के दरमियान कैसे तवाजुन बरकरार रखा जाए, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जवानी या बचपन के बारे में। आप बेटी थी, कैसा दौर आपने देखा फैमिलीज का?
2: मेरा बचपना बहुत अच्छा था। मेरा बाप एक बिजनेसमैन था, महाराजगंज जैना कदल में उनकी किरियाने की दुकान थी
1: जी।
2: बहुत अच्छी खासी आमदनी थी, कोई फिक्र नहीं थी। मेरी माँ एक घराने से थे जो उस वक्त पश्मीना बुनते भी थे और बनाते भी थे, होलसेल करते थे। सो ये दोनों एक किस्म की बिजनेस फैमिली से दोनों थे। मेरी माँ भी बहुत एक्टिव थी, बहुत सोच समझदार थी। मेरे बाप जो थे बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी थे। एक ही पॉइंट उनका हमारे लिए जो वाजे होता था, पढ़ो पढ़ो लिखो और कुछ बनो। वो ये बोलते, उस वक्त बोलते थे, अगर आपको दुनिया को देख रहे हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, पढ़ाई से देख सकते हैं।
1: ये सफीना जी आप किस सन की बात कर रही हैं? हमारे बहुत सारे लिस्नर ये तजुर्बे में,
2: मुझे लगता है ये 60s
1: की बात आप कर रही हैं।
2: तो हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। सबसे अच्छी बात जो थी, हम इकट्ठे सब कम्युनिटीज, हमारे पंडित बरादरी इर्द गिर्द थे, हम थे, और इसे क्या होता था, वो पढ़ने में ज्यादा दौड़ना चाहते थे, हम उनके साथ कम्पीट करना चाहते थे। इस तरह से हमारी जिंदगी का एक लाही अमल बना, मुझे इनको कम्पीट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और ऐसा हो भी गया। बहुत दोस्ती थी उनके साथ, ये ऐसा माहौल था, मैं आज ख्वाब जैसा लगता है मुझे वो माहौल था
1: जी।
2: हम ऐसी सोसाइटी थी, एक पंडित घराने की बेटी की शादी है, मेरी हमको दावत होती थी, और मेरी माँ को रुख्सत के वक्त जाने पूछे बगैर वो ससुराल नहीं जाती थी, इतना आपस में हमारा मिलाप था। आई मिस दैट पीरियड, कि वो कितना अच्छा था, हमारी दोस्ती।

0: दोस्ती भी थी और कंपटीशन भी बहुत था आपस में। हमारे पास में स्कूल था, एक गवर्नमेंट स्कूल, मुझे लगता है वो टीचर्स कितने डेडिकेटेड थे
1: जी,
0: और हम बच्चे भी फरमान बरदार थे। हमारी और कोई गलत एक्टिविटी नहीं, गलत एक्टिविटी से मेरा मतलब है आज जो मोबाइल है इसने हमारे बच्चों के जहन पर, इनके जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है। उस वक्त तो ये चीज देखिए, हमारे घर में एक रेडियो थी, उसका एक स्पीकर लगा था जो जाता था अंदर, वो बैठक में रहता था ड्राइवर रेडियो, और इधर हम थोड़ा बहुत मेरे बाप मेरे चाचे वो इकट्ठे रहते थे, मेरा चाचा मेरा बाप मेरी चाची मेरी माँ उनके बच्चे हमारे बच्चे, एक जॉइंट फैमिली थी और बड़ी फैमिली थी, लेकिन बहुत अच्छी खुशहाल फैमिली थी। हमारे मेरे चाचा के ये दोस्त थे सब पंडित दरादरी, वो सुबह आते थे रोज आते थे, एक दूसरे से मिलते थे गले लगते थे। मेरे चाचा हज को गए पूरे महले के पंडित उनको विदा बुढ़ा भाई कहने आ गए, और जब वो आ गए तब भी मिलने आ गए। मैं कहती हूँ कि ये सोसाइटी गई कहाँ, ये क्यों बिगड़ गई, हम क्यों बिछड़ गए। मैं अभी भी मैं कभी कभी अपने दोस्तों से मिलती हूँ, हम आपस में फोन से फोन पर बात करते। अब रही मेरी पढ़ाई, हम गवर्नमेंट स्कूल में, मुझे लगता है उस वक्त के टीचर्स इतने डेडिकेटेड थे
1: जी जी।
0: वो पढ़ाते थे, हम समझते थे, हमको एहतराम था उनका, हमें डर भी रहता था उनका, घर में भी ऐसी एक गाइडेंस थी। माँ बाप मेरे बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो आशक थे पढ़ाई के
1: जी।
0: वो हमेशा कहते थे पढ़ाई इंसान को पूरी दुनिया, आपको दुनिया देखने पढ़ो पढ़ो, आपको दुनिया समझने पढ़ो पढ़ो
1: जी। सफीना जी तुम उसका रोजन मौजूद, अब चूंकि अपने बच्चों की बात थी पहले आपने मोबाइल का जिक्र किया, विंकन अगर इस कात करो युसन खानदान की जो मजबूती है, बच्चों की तरबियत, वालदीन का क्या किरदार आज के दौर में आपको लगता है, जब आप अपने पेरेंट्स की बात करती आपको क्या लगता है क्या लैक हो रहा है पेरेंट्स से?
0: एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब हम हमारे जमाने में औरतें काम करती थी, जैसे पश्मीना काटती थी या कुछ एम्ब्रॉयडरी करती थी, घर का ऐसा ऐसा काम चार पैसे बनाती थी कम, और घर को सजाती थी संवारती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी। मैं ईमानदार कहती हूँ अगर इतनी थोड़ी सी चूं काम से हो जाती थी हमारे वालदेन पकड़ सकते थे समझ सकते थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान हमारे ऊपर था, उनको समझ आता था ये हमारी आने वाली नस्ल है, ये हमारी फैमिली है जो हमारी नस्ल को सॉरी आगे बढ़ाना चाहती। तो ये है कि उस वक्त क्योंकि पेरेंट्स मेरे बाप थे ना, उस शाम को जब काम से आते थे हम इतने अटेंटिव रहते थे पूरे, फिर वो एक एक करके पूछते स्कूल गए थे काम किया और क्या किया दिन में सॉरी। तो इस तरह से हमें एक लगाम रहती थी, पकड़ रहती थी हम इधर। दूसरी बात एक रेडियो था, कभी न्यूज़ वगैरह सुनते, उसे कभी वो ड्रामा होता था, कश्मीरी का सीरियल होता था, वो सुनते थे एंजॉय करते थे। हमारा सिंपल सा खाना होता था, बिल्कुल दोपहर को खाया शाम को खाया, लेकिन शाम को सोने से पहले हमारे फादर थे पूछते थे नमाज पढ़ी कि नहीं। मतलब अब मैं ये नहीं बोलूंगी नमाज पढ़ने से हम कुछ बनते हैं इंसान,
1: लेकिन
0: डिसिप्लिन होता था,
1: बिल्कुल
0: ये डिसिप्लिन रहता तो ये डिसिप्लिन हमने कायम रखा और इसे हमारी जिंदगी बहुत आगे बढ़ी। आज के बच्चों को हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ में जो एक तमाशा दिया है हमने ये फोन का, आपको अब पता नहीं मुझे नहीं याद ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और फॉरेन कंट्री में मैंने एक बार सुना, वहाँ एक फिर बॉलीवुड से बच्चों ने जुलूस प्रोटेस्ट किया, जुलूस
1: निकाला, बिल्कुल
0: उन्होंने बोला कि हम घर जाते हैं, हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन करें,
1: टाइम बिताना उनके साथ,
0: लेकिन वो हमेशा अपने फोन पर
1: बिजी रहे। यानी कि पेरेंट्स का भी इसमें अमल दखल है, जो वो एक्टिविटी करेंगे जैसे कथा छ पद कर बचते थी, इसलिए कोशिश करें थोड़ा ये मोबाइल था उन फैमिली बीच दूर बेदी करो। तो ऐसी कथ फिलहाल इस
0: रिलेशन टूट गई बिगड़ गई है
1: उस पे बात करेंगे सफीना जी। अपने सुनने वालों के लिए एक प्यारा सा नगमा पेश करते उसके बाद हम फैमिली के बारे

जी दोस्तों, लाइव प्याम शुभ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ है फातिमा और आज की मेहमान है सफीना मुख्तार। आज चूंकि इंटरनेशनल फैमिली डे है, इनसे फैमिलीज के हवाले से बात हो रही है। सफीना मुख्तार सोशल वर्कर, बिजनेस वुमन, हाउस वाइफ, बेटी है, बहू है, माँ है, दादी है, बहुत कुछ इन्होंने देखा है समाज में, घर में। और सफीना जी, अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खानदानी मसाइल है उभरे, खानदानी मसाइल के बाद कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, गुफ्तगू बहुत जरूरी है, अक्सी दस्तरखानस पर बिहन जरूरी, कत बात करन जरूरी। ये कत बात गई वन कत कूर दूर, पन वक्त लिया चुकान दस्तरखान कूत बोड़ आ।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और शो जारी है पयामे सुबह। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और फातिमा। फातिमा आज की मेहमान से कुछ पूछना चाहती है, जो है सफीना मुख्तार
1: जी। सफीना जी, ये मैं कहना चाहूंगी हर एक बेटे से, बेटी से, बहू से ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए, उन्हें बेसहारा मत छोड़िए। जब आप अपने माँ बाप को राज़ी करेंगे तभी तो आपको अल्लाह भी खुश होगा, रब खुश होगा। ये समझिए, छोटे में जब आपके अब्बा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप बूढ़े में, बुढ़ापे में अपने बाबा की लाठी बनिए, उनको बेसहारा मत छोड़िए। इस पे आप हमारे इन जवानों से कुछ कहिए।
2: मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। एक गांव की जो हमारे बड़े जान पहचान है, बेटा बेंगलोर में पढ़ता था, अच्छी एजुकेशन हासिल की, बाप उसका जमींदार है, काश्तकार है, तो अल्लाह ने उसको तौफीक दिया बन उधर ही फिर

0: दादी की, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी। फिर अपनी माँ को ले गया कि हमारा बच्चा है, आप इसको मदद करें। जब उसको ले गए, दोनों सुबह काम को जाते थे, पता नहीं रात को कब आते थे। वो अनपढ़ माँ जिसको जबान भी नहीं थी, उसके पास बच्चा छोड़कर था, वो बहुत तंग हो गई। उसने कहा मुझे याद नहीं, मैं घर जाऊंगी, मैं उधर खेती बाड़ी करूंगी, मैं बाद में काम करूंगी, मगर आप मुझे कन्फाइन किया है एक जगह, कोई हिस्सा बस लगे तक जाएगा। तो ये एक सजा दी उसे माँ बाप को, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसकी बीवी को, जो भी थी, जो भी इसका जिस सेक्ट से वे वाबस्त थी, उसने फिर भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने रिजेक्ट किया, क्योंकि उसने उनकी
1: और वहां पे उसको बिठाना काम करने के लिए सो चुप पठाना इंसाफी वे सफीना जी तो बाचे से माशाल्लाह लड़के से तुंद अगर दुहक रुटीन जानो तुम वन कि बचस नचन तकलीफ दिवान ना मैं जहां तुम मोंगमुत कह दुआ तुम दुहतर तुम कर फोन कर तुज चॉइस पा क्या सोजन क्या अन तोतान गो ठीक आपका दिन का रुटीन क्या रहता है।
0: दिन का रूटीन मेरा, मैं सुबह तहज्जुद के लिए उठती हूँ, नमाज पढ़ के सुबह, फिर सुबह का नमाज कुरान शरीफ पढ़ के वापस बेड में जाती हूँ। कल भी मैंने आपको बोला मैं 9:30 बजे वापस होती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद घर में हमारा एक किचन गार्डन है मैं उधर भी जाती हूँ। घर में हेल्पर भी है, मैंने घर में मुर्गे भी रखे हैं, अपने आप को बिजी रखती हूँ, आप लोगों के पास भी कभी कभी आती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और घर का वो भी देखती हूँ, किचन गार्डन में माशाल्लाह ऑलमोस्ट 80-90% वेज सब्जियां हमारे घर में निकलती, उसका मैं ख्याल रखती हूँ, मुर्गों का ख्याल रखती हूँ। देसी अंडे होते हैं, हम अंडा खाते हैं, हम दो ही नहीं है आजकल, मेरा बेटा जो अमेरिका में था वो भी हमारे साथ रहता है
1: जी।
0: और भी कुछ, एक लड़का मैंने लाया था दूर से, वो आया थोड़ा बिगड़ गया था, अब वो पढ़ रहा है माशाल्लाह, वो मैट्रिक में पास हो गए, वो 11th में पढ़ता है अभी। मेरा बेटा बोलता था उसकी भी थोड़ी सी लैंग्वेज अपग्रेड करो, उसको पढ़ाओ थोड़ा।
1: ये बोलने वाले सफीना जी पानी औलाद नीचे यमो बचे तडोप्ट करमित इहुंद दिल वो तुम कोत बोड बचन मंगान एब्रॉड वनकन अमरीक बचे तम ये अमरीकस मज मगर यमो बचे जो त्रे एडोप्ट करमित कूर तथ मज तिज कफालत कित पा तुम कर तुम कथ कव यह ख्याल कि बह अन पो बचो अलव तो बाकी बचन कर बह ये
0: मे कौन तिन्न मिन्नत मे पस पानस गर नफर
1: अच्छा
0: ये सब रोजस खोश ये कुनी जनी रोजस मैं उनको मेरी मिन्नत नहीं उनकी मिन्नत है मुझ पर
1: माशाल्लाह बिल्कुल
0: बच्चों के और इंशाल्लाह वो अच्छे बनेंगे किसी मकाम पर पहुंचेंगे जिसके लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से मांगती हूँ वो मेरे लिए
1: वनकस तुज पढ़ाई तिम बचन हज पढ़ाई तु ही पकन तिह सो
0: अल्लाह चलता मैं कौन सब अल्लाह का है।
1: देखिए ये आपका बड़ा पन है कि तु एडॉप्शन करित वनान कि ये अल्लाह ताला दिवान अल्लाह ताला ही दिवान मगर अत रिश्तस तु नाव दिवान ये तुम पन किस्मत खावान ये अमिस दिल बोड आसे
0: अल्लाह ने हर हिस्से का मालिक
1: रखा है
0: बनाया मैं कौन हूँ उस हिस्से के मालिक वो है और मैं क्यों रोकूं वो
1: पन बचन मा छो का शिकायत
0: मेरा बड़ा बेटा है मैं उसको बोलता हूँ आप थोड़ा लेजी हो
1: काम के मामले में काम
0: काम के मामले में थोड़ा सा लेकिन करता है
1: जी।
0: और वैसे ओवरऑल आप वो इतने बड़े हैं अब वो भी बैठे वाले हैं अब शिकायत का कोई टाइम नहीं है अब उनको खुद मुख्तार रहने देना चाहिए जैसे उनको चलना है चलने देना चाहिए
1: ये अच्छा बे अच्छा बोझन कह थवान बुजुर्ग तिरंजिश पन्नस दिलस मज कि अगर बचन कह पास्टस मज खमी आज या गलती कर पर्नस मज हुथ मज यथ मज पत तुम सु ब्रोंट ब्रोंट अना जान गो ये कि पत मशरावन
0: لۄکٹیو ییٚلہِ ٲسۍ مار تہِ ٲسکھ دِوان چوب تہِ دِوان پرناوان تہِ پانہٕ تہِ ٹیوٗرِ مگر وۄنۍ چھُ سِٹی وۄنۍ چھِ تِم تہِ مٲلۍ مٲج بَنیمٕژ وہ بھی اب اَڈَل بہت بوٗڑے ہونے لگے ہے بہٕ کیٛازِ دِمہٕ تِمن دخل وہ ان کے اپنی زندگی اور ان کا بھی دخل

0: नहीं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में,
1: अरे क्या बात है,
0: जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें उसका मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या खर्चती हूँ, मेरे क्या है,
1: अच्छा
0: कोई दखल नहीं है उनका। मैं मेरी अपनी खुद मुख्तारी, उनके अपनी खुद मुख्तारी, ये जिंदगी का एक उसूल है, ना उनको शिकायत ना मुझको शिकायत।
1: देखिए फातिमा अम कथि पथन कहन कह मुदाखलत ये पन्नी जाए मौज खोश तम पन्नी जाए खोश, सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए दुआ करना और रिश्ते ठीक।
0: नहीं मैं भी नौशाद के साथ शिकायत ऐसे अल्लाह देखता है, मैं इसको रिपीट नहीं करती हूँ जो है। हाँ कभी थोड़ा सा हो जाता है दिल में, अल्लाह से दुआ करती हूँ मुझे सब्र दे और उनको इखलाक दे, उनको अच्छी जिंदगी बसाने के।
1: आमीन आमीन। दोस्तों इस बात के बाद, सफीना जी की इस बात के बाद कोई बात नहीं रहती है, क्योंकि इन्होंने बात को खुद मुकम्मल कर दिया। मैं सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई, बस ऐसी ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ये एक मैसेज सासू माओं तक, बहुओं तक पहुंच गई, बेटियों तक पहुंच गई, बस अब सोचने समझने की बात है। और चलते चलते आपको इस गीत के सहारे छोड़ती हूं और आगे का ट्रांसमिशन जी मेरी साथी मुस्कुरा रही है फातिमा, ये संभालेंगी।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। जिस समय आप समाप्त कर रहे थे लाइव मॉर्निंग रेडियो शो पयाम सुबह की नशरियात, 11:30 हुए हैं।

हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत अरहट शरिया उठक मीटर तो एफ एम अख तरह शरिया पांच मेगा हटसन पेट समीन वंच पे छकर तो रो फनकार मंजूर अहमद शाह तो हमनवा इन निश बूजू तुम कलामी शहबाज हाकपरी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने की आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 मुल्कों मुतहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना हुए। पहले मरहले में वो मुतहदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को आगे बढ़ाने के साथ साथ कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी तबादले ख्याल करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 का इम्तहान दोबारा से 21 जून को लिया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और वालिदैन से अपील की है कि वो सिर्फ एनटीए की सरकारी चैनल्स पर ही भरोसा करें। वाज़ह है कि रवां महीने की

0: तीन तारीख को लिए गए इस इम्तहान को मुबैना पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद रद्द किया गया था और अब सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है। गुज़श्ता रात मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की रिहाइशगाह पर एक आला सतह की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें आने वाले नीट इम्तहानात के सिलसिले में तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। तेल कंपनियों ने आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कुपवाड़ा जिले के टंगडार करना में एसएम हिल पर शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इसका मकसद बैटलफील्ड टूरिज्म को फरोग देने के साथ साथ सकाफती विरसे को तहफ्फुज देना और इस सरहदी इलाके की तरक्की को यकीनी बनाना है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह प्रोजेक्ट कलील मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए नॉर्दर्न कमांड चिनार कोर तमाम अफसरों, इंजीनियरों और मकामी लोगों की सताइश की है। उन्होंने कहा कि शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानी और दिलेरी को खराज अकीदत अदा करने की निशानी है। इस तकरीब पर नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के अलावा फौज इंतजामिया के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात के लान से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और मनुष्यात के नेटवर्क को खत्म करने में इंतजामिया, पुलिस और दीगर एजेंसियां कोई भी तकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बजाते खुद मुख्तलिफ अजला में जाकर पद यात्राओं और मनुष्यात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों की क्यादत करते हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत उन्होंने पिछले महीने की 11 तारीख को जम्मू से की थी और इसके तहत अब तक मनुष्यात के खिलाफ काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी और जेकेपीएससी इम्तहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इस बारे में जेएंडके स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: पहले साल 2023 में हमने इसको कोचिंग किया था, लेकिन कोचिंग में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। हमने खाली रेजिडेंशियल फैसिलिटी ही है, यानी बच्चा खुद आएगा और अपनी तैयारी करेगा लाइब्रेरी में बैठ के। इसके लिए नोटिफिकेशन हमने कल इशू की है, तो अब बच्चे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इसके बाद एग्जाम होगा। जो बच्चे बेहतर होंगे उन्हें ये फैसिलिटी दी जाएगी। 50 बच्चे इंशाल्लाह हम साल लेंगे। 2027 मार्च 15 तक रहेगा जब हमारा हज डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तब तक इंशाल्लाह ये फैसिलिटी।
0: ज़िरात और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने कल एक मीटिंग के दौरान वादी में काम कर रहे वेटरिनरी यूनिटों की मौजूदा सूरत हाल, नीज महकमे ज़िरात में अमलाई जा रही मरकजी मामनत वाली स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर मौसम को जानकारी दी गई कि पशुपालन महकमे में अफरादी कुवत की किल्लत को दूर करने के लिए डॉक्टरों और पैरा वेट्स की खाली पड़ी असामियों को पूर करने के लिए लवाजमत पूरी की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने कल श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अंदरूनी वाटर ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और एक फॉल नक्शे राह तैयार करने से मुतलिक उमूर का जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े दरियाओं में जदीद तर्ज का एक देरपा और माहौलिया दोस्त वाटर ट्रांसपोर्ट निज़ाम वजूद में लाने के हवाले से सैर हासिल तबादले ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतलिक महकमों को हिदायत दी कि वह इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ तालमेल रखें। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लावरू ने कल लाल बाजार इलाके में गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल बागाती शूर का दौरा करके वहां जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतलक अफसरों को हिदायत दी कि वह दरदस्त लिए गए काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि तलबा को आला मयार की तदरीसी सहूलियात दस्तियाब हो सके। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: آداب، یہ آکاش ونی سری نگر ون بوزن مزمل کمبے خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سپد آج صبح پانچن ملکن متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے تو اٹلی ہندس شین دہن ہندس دورس پہ روانہ۔ گڈنکس مرحلس مزے تم متحدہ عرب امارات دور کران، تم تتک صدر شیخ محمد بن زائد النہانس سیت ملاقات کرن، دشوئی لیڈر کرن مختلف شعبن مز شرکت برہ پکن ست ست کہیا علاقائی تو عالمی معاملن پہ خیال باوت۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھ اعلان کورمت نیٹ یو جی 2017 امتحانی دوبارہ اکوہمہ جون ہین اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ایجنسی امیدوارن تو والدین اپیل کرمز۔

0: अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
2: पर क्या कर सकते हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
3: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: ly kehte he.
1: Wuchu askal chunu su yu nugatsun kutuz u sasan teli.
0: Su kover kunyadastan var ya kam, var ya kam. Dayin
1: korasi ki beni he beniş ya bayis nich gatsa. Sadu per ya sa te kar hoy sarı.
0: Aç gatsa su kor kokar asu maz. Az gatsin
1: kokar maz asu az gatsin kor tri asin tem tu somro rişti.
0: Somro gaja am sit gaven bandiş falena vanchum chicken chuin az vay vay gaja.
1: Maruf haji gadiel tu gaisi gatsuna atas katulin dil.
0: मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगी, डुअल निम वैसे सुनत है, सुनत रसूल अल्लाह है ये, अगर किसी के घर में जाओगी थोड़ा कुछ ले लो, ले ले। मगर ये नहीं कि है उन्होंने फ्रूट लिफाफ में किन आई मीन पीट ये नहीं
1: तो है ना,
0: प्लीज इसे परहेज करें आप लोग, आपस में आने जाने का एक रास्ता खोलो, बंद मत करो।
1: अच्छा मारूफ हजी वन ईयर फैमिली नेबर यानी लॉकट यूनिट उस वन ईयर बड़ी सी वन बचे जन आइसोलेशन मज पलो पलो तुम क्या बस जहन बनो अम सरबियत गई मैंने अत आइसोलेशन मज ये क्यों समाज रुकन बन पगह।
0: मैं आपको यहाँ बोलूँ कि अगर एक फैमिली में एक फैमिली परिवार आपस में जो रहते हैं खुश सलूबी के साथ और सीखते हैं इसी फैमिली में, यही कल एक अच्छा शहरी बन सकता है। या आइसोलेशन में रहने वाले बच्चे आप देखो, अगर वो जॉब भी करते हैं ना, ये अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये वहां पर कामयाब नहीं हो, कामयाब अगर गई तो मगर दे डोंट हैव दैट बॉन्डिंग विद द स्टाफ एंड विद देयर कलीग्स एंड विद देयर बॉसेस एंड नहीं होता है।
1: अच्छा तो अच्छा पसंद कि यूज आइसोलेशन में रोजान छु या ये मन फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग छु आसान तो अच्छा बसान कि यम सत पत अप स्टम्स इस लाइफ में
0: दे आर नॉट एबल टू टैकल दैट
1: है ना,
0: दे आर नॉट एबल टू टैकल,
1: जस्ट बीच कमजोर आसान
0: कमजोर गछान। अच्छा यहां एक और मिसाल में दूंगी, आख फैमिली छे ये मुझे हिस कोरमत पान वे यम छ अलग अलग जचोर बगैर रोजान मन छ आख एमस बनावा मकान तो ये मुझे कुछ दिनों पहले मेरा एक अजीज बोल रहा था, दोपन यमो कोर बड़ चौकर सांद्री ये तिपान में ना ये क्या कहते हैं इसको हिस्स थ मगर वन चू बनावा लौकुट हो मकान मगर तुम छु तुम नु सुपरवाइजर कड़ित बे मल तुम क्या दुपन दुम तुक पागल कर अमिस पे खर्च पंद सा रोपये रेतस पंद सा तमिस दिन बारोज पान खड़ा मे अत वन फैमिली बॉन्ड दस अद गो इन चौकर मगर इन तरबियत सही लज गोड यह समझ कि वन लौक बोय अस बनावा मकान मगर मे अम सन फर्ज पूर कर और मैं इसको साथ रहूंगा, कितना ब्यूटीफुल रिश्ता होता है ये।
1: सही बात दबू कि फैमिली रोज तेल स्ट्रांग ये अत मे जज्ब अत ईमानदारी आस अत मूक आखिक सुन चुक आरूफा जी मारूफा जी वन जी
0: बिल्कुल बचे अदमेन बचे
1: प्रोग्राम किस अखरस पे पगाम।
0: बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर फैमिली मंस अस रोजुन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली में रहना आजकल, क्योंकि वो बच्चे तो अत पलान पन पान तो थोड़ा फ्री रोजान कच बज कच बज नीर ये भी नहीं समझ आता आपको, मगर आप बड़ों की इज्जत करो और बड़ों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन छोटों से भी मोहब्बत से पेश आ जाओ।
1: वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का
0: पानी, बारिश का पानी।
1: सठा सठा शुक्रिया सामान्य सपोज सान के प्रोग्राम वक् तंद इनशा सपदो तुंद खदमत मज बे हाजिर अक्स नई प्रोग्राम मज नो मौजू है तो तम दी तो इजाजत पीतो खुदा सवाल अस्सलाम वालेकुम।
2: ماجہ بینہ اس پن من پسند پروگرام بوزان بزمی نسواں پیشکش سمینا شاہ سنیس دہمی سیلانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم 268.8 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر دن کا 1 بجے چاہتا ہے۔ اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا۔

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल

0: भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा।

भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए

0: पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हां साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की

0: जरा बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थीं। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
5: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
6: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher, because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
5: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down

0: Umang.
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 1:40 और 30 सेकंड हुए हैं। आए अब सुनते हैं नातिया कवाली, पेश कर रहे हैं हबीब पेंटर कवाल और साथी। कलाम है हबीब पेंटर का।

जी समीन, आप सुन रहे थे नाट्य कवाली, पेश कर रहे थे हबीब पेंटर कवाल और साथी, कलाम था हबीब पेंटर का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूजबी में तवानाई से मुतालिक तआवुन और दोतरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। BJP MLA रतेंद्र बासु को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली का नया स्पीकर मुंतखब किया गया है। और बैडमिंटन में भारतीय मर्दों की सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बातचीत में तवानाई से मुतालिक तआवुन और दो तरफा तिजारत खास मौजूआत रहे। ये बातचीत मगरबी एशिया में जारी तनाज़े की वजह से आलमी सप्लाई में रुकावटों के पस मंजर में की जा रही है, जिसमें उम्मीद है कि दोनों फरीक तेल के जख़ीरों और गैस सप्लाई इंतजामात के बारे में तबादले ख्याल करें। दौरे से पहले UAE के बैन अल-अक़वामी तआवुन की वजीर ममलकत रीम बिनत इब्राहिम अल हाशमी ने वजीर आजम मोदी को UAE में एक मुमताज शख्सियत करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये दौरा महज इसी साल के दौरान आला सतह के बहुत से दौरों के बाद किया जा रहा है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा जनवरी में और वली अहद शहजादा ने फरवरी में किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में सभी शराकत दारों के साथ काम करने का पाबंद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग के दूसरे दिन एक ओपन सेशन से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन सरगर्मियों की वसत से इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि सभी रहनुमा तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में कसीर मुल्की तआवुन को मुस्तहकम बनाने में शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैन अल-अक़वामी माली तरीक़ेकार में इस्लाह की फौरी ज़रूरत है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम की लगातार वकालत की है, जो एक ऐसा मुल्क है जो मौजूदा दौर के हकाइक की अक्कासी करता है और उभरती हुई मार्केट्स नीज तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हर एक मुल्क को न सिर्फ आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बल्कि एक मजीद जमहूरी सबकी नुमाइंदगी करने वाले और मुसावियाना बैन अल-अक़वामी निज़ाम को तश्कील देने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के वजीर खारजा अब्बास राक्षी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान मगरबी एशिया की सूरतहाल और उसके असरात के सिलसिले में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के दो तरफा मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग में जनाब अराक्ची की शिरकत को भी सराहा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि तलबा हुकूमत की तरजीह हैं और वो इनके तई हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तिहानात का इनाकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तलबा इस इम्तिहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट UG इम्तिहान अगले साल से मौजूदा OMR पर मबनी तरीक़ेकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत

0: में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: तालीम के वजीर ने एतराफ किया कि एनटीए को वाज़े इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी न हो, इसके लिए इम्तिहान के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इकदामात किए जाएंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई मुस्तहक तालिब इल्म के धोखेबाज उम्मीदवारों या तालीम का माफिया की साजिशों की वजह से अपने हकूक से महरूम हो जाएं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आज दुनिया न सिर्फ दिलचस्पी के साथ बल्कि सताइश के साथ भारत की तरफ देख रही है। नॉर्वे के एक अखबार में नॉर्वे के साबिक वजीर एरिक सोलियम का तहरीर करदा एक मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि इस मजमून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत की इकतसादी और माहौल के लिए साजगार तरक्की नीज जमहूरी ताकत उजागर की गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में हिंदुस्तान भारत उभर रहा है और उसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रतेंद्र बासु को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली का बिला मुखालिफ स्पीकर चुन लिया गया है। जनाब बासु, जो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज रुकन के तौर पर कूच बिहार जुनूब की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने असेंबली इंतखाबात में अपनी पहली कामयाबी के बाद ये ओहदा पहली बार संभाला है। उनका इंतखाब प्रोटेम स्पीकर तपस राय की निगरानी में आज सुबह किया गया। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने जनाब बासु का नाम बाकायदा तौर पर तजवीज़ किया था। ऐवान ने इस तकर्रुर की 100 वोट से तस्दीक कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अरकान इंतखाबी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, अलबत्त उन्होंने इजलास में बाद में शिरकत की। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपये 77 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106 रुपये 68 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108 रुपये 74 पैसे जबकि फी लीटर डीजल 95 रुपये 13 पैसे हो गया है। दूसरी जानिब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी आज सीएनजी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया है। अब दिल्ली में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79 रुपये 9 पैसे और गाजियाबाद और नोएडा में 87 रुपये 70 पैसे है। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 84 रुपये 12 पैसे फी किलोग्राम हो गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि उन्होंने रियासत से मुतालिक अहम तरक्याती तरजीहात पर तफसीली बातचीत की। वजीर मौसूफ ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की और सभी के लिए बेहतर फजाई राबतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तसव्वुर के मुताबिक मध्य प्रदेश में हवाबाजी से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और इलाकाई राबतों में इजाफा करने की वजारत के अज़्म को दोहराया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12 21-13 कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमुरा और युइची शिमागोमी को शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की 12वें नंबर और ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागोची को क्वार्टर फाइनल में 21-19 18-21 और 15-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूजबी में तवानाई से मुतालिक तावुन और 2 तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमत नामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں

0: Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वे 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 2:15 हुए हैं। लीजिए अब पेश है चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म बदलते रिश्ते से। खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

जी दोस्तों, आपने फिल्म बदलते रिश्ते से टाइटल गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म बनफूल से, प्यारा सा गीत किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का मधुर संगीत।

जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे। दिन के 2:30 बज चुके हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इच्छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.8 मीटर ते FM 3.5 MHz पे सामिन वंच पे छकर तरो फनकार मंजूर अहमद शाह हमनवाई मनीष बूझ तु कलाम गुलाम रसूल आखून।

जय हिंद। फौजी भाइयों, फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपके खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपके नजर फिल्म एक विलन से प्यारा संगीत अंकित तिवारी और साथियों की आवाजों में गीत संगीत अंकित तिवारी का।

जब वी मेट। जी दोस्तों, ये है हमारी अगली फिल्म जिसका नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं मीका सिंह और साथियों की आवाजों में, अर्शद कामिल के बोल, प्रीतम का मधुर संगीत।

जी दोस्तों, आधे श्रीवास्तव के संगीत में सुनते हैं आनंद राज आनंद के बोल। मेजर साहब से गीत सोनू निगम, सुदेश भोसले और साथियों की आवाजों में।

जी दोस्तों, आपने सही पहचाना। आप समझ गए, फिल्म प्यार तूने क्या किया से ये गीत आशा दाई सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है ना, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर।
4: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में, घर घर की आवाज, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज, मीडियम वे 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला गीत हमने चुना है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, इकबाल अफजल साबरी और अनुपमा देसाई की आवाजों में। आपकी नजर ये गीत।

जी दोस्तों, फिल्म आशिकी 2 से अगला नगमा सुनते हैं अर्शद कामिल के बोल, जीत गंगोली के संगीत में, अर्जित सिंह की आवाज में ये गीत आपकी नजर।

जी दोस्तों, समाप्त कीजिए फिल्म सनम रे से टाइटल गीत अरिजीत सिंह और अनुराध बावला की आवाजें, गीत संगीत मिथान का।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म फिर जन्म लेंगे हमसे। ये टाइटल गीत किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार गौहर कानपुरी, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: जी दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडिया वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म 5 मुल्कों के 6 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में पहुंचे अबूज़हबी। UAE के सदर के साथ बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार। शोपियां में साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग का इफ्तिताह करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार ख्याल। जैनाकोट श्रीनगर में कायम 450 MVA गुंजाइश वाले ग्रिड सब स्टेशन की सलाहियत बढ़ाकर 780 MVA करने को वजारती कौंसिल की मंजूरी। और NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऐलान। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के 6 रोज़ा

0: रूम में बैठ के, और हम एग्जाम लेते हैं वीकली या दो हफ्तों के बाद या मंथली हम टेस्ट सीरीज का कंडक्ट करते हैं, और हमारा मेंटर रहते हैं ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। जो हज कमेटी की वेबसाइट है jkshc.org उस पे अवेलेबल है।
1: जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल शुरू हो गया है। तफसीलात देते हुए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें jkadmissions.in, और ये प्रोसेस चलेगा अपटू 27th, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार, एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजामिया के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बारे में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
4: अगर आप देखेंगे जिला अनंतनाग ने कितना काम किया है, और अगर आप स्टैटिस्टिकली मुझे बताएंगे अभी तक जितने हमने इवेंट किए हैं वो मोर देन 8000 इवेंट है, जिसमें से मोर देन 7.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हर किसी जगह से, बिल्कुल पंचायत और विलेज लेवल तक। पुलिस की जानिब से अगर आप देखेंगे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है जो पेडलर थे, और कितनी बरामदी हुई है डिफरेंट नाकाज पे। दिस इज अ मैसेज, दे आर वेर कमिटेड, इट हैज अ सिंसियरिटी इन इट, जहां पर सब लोग इस चीज को जान लें कि दैट नशा जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए सामने आई है।
1: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे ने इंडस्ट्री कनेक्ट मुहिम के तहत कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एरो थर्मल इंजीनियर तकवा कादरी के साथ मुलाकात की, एक नशस्त का अहतमाम किया। इसका मकसद यूनिवर्सिटी के तालब इलमों को तदरीसी अमल और इंडस्ट्री के दरमियान रबते के बारे में जानकारी देना था। श्रीनगर को लद्दाख से मिलाने वाली श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड को दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया है। इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी की गई एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस सड़क पर आज से दो तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। गांधरबल, द्रास और करगिल अजला के हुकाम से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में रोजाना की बुनियादों पर मौसम से मुतलिक एडवाइजरी को मलहूज नजर रखें। तेल कंपनियों ने आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। भारत की सदारत में नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास जारी है। इजलास के दूसरे रोज आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह इजलास आलमी इस्तेहकाम के लिए अहमियत का हामिल है। राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले 14 वर्ष की उम्र के मोहम्मद यासिर जम्मू कश्मीर के नए पहले बॉक्सर बन गए हैं, जिन्होंने अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन सुपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
5: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सफर के 4 बज चुके हैं, अब नश्र होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजारती वक्फा।
6: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अजदा पाड़ी प्रोग्राम किनका में हाँ तुस्ती मेज़बान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारियां को प्रोग्राम भी जी आया को आखतियाँ और कदया उते प्रोग्राम दी शान बताओ सामीन अज जुमा मुबारक ते प्रोग्राम दी शुरुआत कर दें इस नातिया कवाली नाल आवाज़ अब्दुल रशीद कुरैशी ते साथियां दी

0: जे बैतुल्ला थी बड़ा मकाम रखते हैं। किया के इंसान नाल अच्छा बर्ताव करना अल्लाह को खुश करना, और अल्लाह दी खुशनुदी थी बड़ा और किड़ा कम हो सकता है। अल्लाह करे असा सारियां दे अंदर ये अच्छियां सिफतां पैदा हो जुलन, और एक ही दुए दी फिक्र हमदर्दी ते गमखारी असा विच आ जुलै। आमीन सुम्मा आमीन वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: जी सामीन, तुसा एक गलबात सुनी, पेश कर रहे से मौलवी नज़ीर उल हसन, ते मौजू आसा बीमारां दी अयादत। सामीन, ए भी इंसान दे अंदर अखलाक ही हैं कि अगर अस्ते हमसाए बिच या रिश्तेदारी बिच या किसी दूर दराज रिश्ते बिच कोई बीमार आ, तो असा सुन चाहिदा कि उसकी तबीयत दे बारे पूछा, उसको गचका मिला कि या क्या आखते हैं कि ये सुन्नत भी है कि एक बीमार जड़ा अंदर ही हो सी काफ़ी टाइम तो, उसको गचका उसको मिलका इंसान को तसल्ली मिलती है और उस बीमार को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो सामीन आओ अगर सुनते हैं प्रोग्राम बिच ये लोक गीत आवाज़ सैयद मुहम्मद इकबाल मलनगामी और दी।

0: और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
1: एक खबरनामा तुसी आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हो। खबरना तुसी आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH ते भी सुन सकते हो। मंशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने वास्ते कीते जरूरी कोशिशों बारे अनंतनाग जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मैदीन भट्ट सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करदे आख्या।
3: अगर आप देखेंगे जिला अनंतनाग ने कितना काम किया है और अगर आप स्टैटिस्टिकली मुझे बताएंगे अभी तक जितने हमने इवेंट किए हैं वो मोर देन 8000 इवेंट है, जिसमें से मोर देन 7.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हर किसी जगह से बिल्कुल पंचायत और विलेज लेवल तक पुलिस की जानिब से अगर आप देखेंगे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है जो पेडलर थे और कितनी बरामदी हुई है डिफरेंट नाकाज पे। दिस इज अ मैसेज दे आर वेयर कमिटेड, इट हैज अ सिंसियरिटी इन इट, जहां पर सब लोग इस चीज को जान लें कि दैट नशा जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए सामने आई है।
1: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा दे मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे बिच इंडस्ट्री कनेक्ट मुहिम के तहत कश्मीर दे रहने वाले एरो थर्मल इंजीनियर तकवा कादरी नाल मुलाकात की एक नशिस्त का अहतमाम किया। इसका मकसद यूनिवर्सिटी बिच तालीम हासिल कर रहे गदरे ते गदरियों को पढ़ने पढ़ाने दे अमल ते इंडस्ट्री दे विचकार जुड़े रहने बारे जानकारी देना सा। इस मौके ते तकवा कादरी सुन अपने पेशावराना सफर ते इस शोबे बिच अपने तजर्बे सांझे किए। श्रीनगर को लद्दाख नाल मिलाने वाली श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड को दो तरफों गड्डियों की आवाजाही वास्ते खोल दी गया है। इस सिलसिले में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफों जारी किए एक नोटिफिकेशन भी आखी गया है कि सड़क तक आई थी दो तरफों गड्डियों को चलने की इजाजत हो सी। गांधरबल दराज तक कारगिल जिले के हुकाम से आखी गया है कि इस सिलसिले में रोजाना बुनियादा तक मौसम के मुतालिक एडवाइजरी को नजर भी रखन। सफर करने वाले नफर की सहूलत वास्ते इस सड़क तक चंगिया खिदमत रखने की भी हिदायत दी गई है। तेल कंपनियां सुन आलमी सतह तक कच्चे तेल दी कीमतों में इजाफे को देखते हैं पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों में 3 रुपये फी लीटर वाधा करने का फैसला किया गया है। भारत की सदारत भी नवी दिल्ली भी ब्रिक्स मुल्कों के खारजा वजीरों का इजलास चल रहा है। इजलास के दुए दिहाड़े अज अपने ख्याल सांझे करदे खारजा वजीर डॉक्टर अशय शंकर सुन आखे जे इजलास आलमी इस्तेकाम वास्ते अहमियत हामल है। उन्होंने सुन आखे जे बैन अवी माली ढांचे बिच इस्लाह वेले का तकाजा है। इससे पहले डॉक्टर जय शंकर सुन ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकी नाल कनी थी मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश भी पिछले 36 घंटिया बिच बिजली चमकने ते जोरदार बारिशों ते तूफानी हवावां दी वजह नाल 111 नफर फौत हो गए जबकि 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इस नाल ही पहाड़ी खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी थी अगला खबरों का अगला बुलेटिन 5:50 का गोजिस बान भी नशर हो सी। दियो इजाज़त, खुदा हाफिज़।
4: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय 4:30 हो रहे हैं। आइए समाप्त करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: समय आप पंजाबी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम पेश कर रही थी रमेश कौर, मोविन सरफराज अहमद खान, पेशकश समीना शाह।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम।

0: ला मेरी गुजारिश रहेगी अंजुम जी ना कि तम अपनो तारुफ मारा सामी नाल कराओ।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजू मालूम है, हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ही ताल्लुक़ रखूँ, हूँ इस टाइम मैनेजिंग डायरेक्ट मेरी अपनी कंपनी है। थारो बहुत बहुत शुक्रिया तुमने ये तमना इन्विटेशन देते हो बोलने की हमना मौको देते हो।
0: नरगिस जी हुण थारी वारी।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरगिस रशीद, हम बांडीपुरा चिट्ठी बांडी तो ताल्लुक रखा। मारी पढ़ाई स्टार्टिंग ते करूं हुई है, उस तो बाद हमने गुजर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल श्रीनगर 6 तो लेकर ग्रेजुएशन तक हमने उतु पढ़े हुए। बाकी फिलहाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करा और फैमिली में हेल्प करा, बिजनेस है थोड़ा बहुत तो उसमें
0: जी अंजुम जी स्टूडियो में आके तमना किसो फील हुआ लगो कि पहली बार तम आया है ना इत ऑल इंडिया रेडियो का इस स्टूडियो में ते
1: बिल्कुल
0: किसो लगे।
1: बहुत अच्छा है। यो भी एक्सपीरियंस एक डिफरेंट डिफरेंट इंसान इस पहले कदे आया भी नहीं था, कदे देखियो भी नहीं या इस एसोसिएटेड नहीं हम इसके नाल। बहुत ज़्यादा अच्छा एक डिफरेंट जी फीलिंग है, एक कह सका बचपन शायद याद आ गया, नॉस्टैल्जिया वह लगो भी फील इस
0: ठीक
1: टाइम।
0: ठीक
1: मेरा बड़ा बुजुर्ग सुनी हुई था मारो नानू अगर करके उस टाइम हम बहुत निका
0: निकावेंदा
1: हुआ था, तो वो एक सीन पूरा रिपीट वह लगो भी इस टाइम।
0: नरगिस जी थारा था असरात।
2: जी हमने भी बड़ो असल लगा लगो क्योंकि मेरी वालदा है उन्होंने भी इसका भी प्रोग्राम दिए था, मेरा नानू ने भी प्रोग्राम दिए था। तो बचपन में जब रेडियो सुना था गोजरी प्रोग्राम सुना था, 5 बजे जब बजे था तो फिर रेडियो ऑन हो जाए तो सुना था, सोचूं थी कि ये कौन लोग होता होगा जो रेडियो में जाता
0: खलाई
2: होगा
0: मखलूक मत वैगी काए।
2: बिल्कुल कदे सोचियो नहीं तो रेडियो में आन की तम मौको देंगे। तो
0: तो थारे तो पहला जिस तरह तुमने देखा था कि कुछ मारी बरादरी की जो शख्सियात थी वे इत स्टूडियो में मौजूद थी तो उन्होंने भी थारो एक तरह को तारीफ हो तो किसो फील हो।
2: आज तक हम जो आस पास देखा था इतना हमने पतो नहीं थो
0: ठीक
2: क्योंकि हमेशा पढ़ाई नल अपनों कॉलेज स्कूल वगैरह
0: ठीक
2: ना इतना पतो नहीं थो कि
0: हॉस्टल
2: गुजर
0: लाइफ में।
2: हाँ हॉस्टल लाइफ में। आज उन्होंने मिलिया हम मैं अंजुम जी ने कहूँ थी देखो इतनी आला शख्सियात हैं कि
0: मारी
2: हम
0: बरादरी
2: शायद
0: में।
2: बिरादरी में उन्होंने मिलिया हमने उन्होंने गलबात की, बड़ो असल लगो
0: असल फील
2: कि
0: हुआ।
2: मतलब
0: ठीक
2: खुश नसीब हूँ।
0: तो हम कुछ ऐड करना चाहें इसमें।
1: जी बिल्कुल, यो है ना कि हम अगर किसी जगह पर जा लगा भैया ईत आया भी हाँ शायद कदे सोचो भी नहीं तो इस रंग की शख्सियत ना हमारी मुलाकात होगी या मिल सकांगा, शायद ये थारे जरिए एक बन
0: रेडियो
1: सके
0: के
1: है
0: जरिए
1: कोशिश। जी
0: जी
1: बिल्कुल रेडियो के जरिए हमने या मौको मिले उनके नाल इंटरेक्ट होने को लभन को या भी एक बहुत बड़ी हम बहुत कुछ सीखा अगे जहाँ इसी चीज़ ना ले गए
0: ठीक
1: हम अपना बड़ा ती भी काफ़ी चीज़ है जी सीखा या हम अपनी गोजरी लैंग्वेज ना जो हमारी जेंजी जी तो ये
0: ठीक
1: बहुत अच्छी गल है, उस नाल इंस्पिरेशन भी लभे हमने अगे काफ़ी चीज़ सीखने की भी लभी,
0: ठीक
1: बहुत अच्छा लगो उन्हें मिल गए।
0: आगे मौजू की तरफ आने से पहला
1: जी
0: शुरू में एक गीत थारी नज़र करना चाहूँगा। तुम अपनी चॉइस के हिसाब से दस सकें कोई भी गीत जो तुम सुनना चाहें।
1: काबिल बुखारी साहब की आवाज़ में कोई भी दम।
0: गीत सुना लिया
1: जी जी बिल्कुल।

0: जी सामीन, मारा आज का मेहमाना ने तो तमने काबिल बुखारी की आवाज़ माँ मुनीर जायद आरा को लिखो यू कलाम सुनियो, आ तो जातो रेया कर मेरी टोक माँ। उम्मीद है तमने पसंद आयो वैगो। हूँ हम मौजू की तरफ आवा। अंजुम जी, थारा ते मेरो पहलो सवाल, तमने अपनो स्टार्टअप शुरू करने को आइडिया किस तरह डेवलप कियो?
1: असल में यो बचपन में एक माइंड सेट वह कि कुछ अपनू करनू है या कुछ अलग करनू है। यो थो एक फैमिली इन्फ्लुएंस हो जाए इंसान ना सारा जॉब करी लगा भी, या ज़्यादातर अगर देखियो जो हमारी यूथ इसी तरफ है जो हमने गवर्नमेंट जॉब लोड़ा है या जॉब की तरफ एसोसिएटेड है, फिर वो इंसान कि ना कि अपना ट्रैक शायद चेंज कर ले। मी सेम चीज़ वही करी, अपनी पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद नर्सिंग करी। अतः फैशन डिज़ाइनिंग में मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसके बाद कारगानी स्पॉट की होता है, फिर मैं उसकी तरफ ही गई हूँ। वो भी मिल लियो जेडो पहला थी वो माइंड सेट बने हुआ है जे डिफरेंट तरीका ना ले जानो है, उसमें एक अपनू कुछ करनू है वह ले गया था। फिर एक टाइम ऐसा आयो क्यों ना इस ना इम्प्लीमेंट करनू है। पूरी प्लानिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई या नॉलेज नहीं थी स्टार्ट करके, जितनों हमने शायद पढ़ाई में अपना 20 ईयर्स देता या 10 ईयर्स देता या 15 लगे, एक साल अगर हम इसमें दें उसकी ज़्यादा एक्सपीरियंस था इसमें इंसान गेन कर, उतनी नॉलेज नहीं होती। मगर अगर कोई करनू चाहे उसना चाह वह करेंगी दे वो डेफिनेटली हो जाए।
0: ठीक, मारो अगलो सवाल नरगिस जी ना। नरगिस जी, तम दसो तम आजकल के करें, किसी इम्तिहान की तैयारी में लगाएं या थारो अल्टीमेट गोल के?
2: जी फिलहाल तो ग्रेजुएशन तो बाद एग्जाम की तैयारी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करा लगा थे, देखा कि वह उस तो बाद मेरे साइड नल फैमिली जोड़ो बिजनेस है उसना के बदान की भी मैं सोच जा रही है, उसके वास्ते प्लानिंग भी चला लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द
0: उस पासे तम जान आला
2: जी इंशाल्लाह।
0: अंजुम जी, थारा कारोबार में सबसे पहला मतलब जब तुमने शुरू किया उसमें चैलेंजेस के था? फाइनेंशियल चैलेंजेस था, सोशल कंस्ट्रेंट्स था, या माइंडसेट को मसलो थो, कुछ थो इसो?
1: अगर दो बहुत ज्यादा बड़ी चीज देखी जी या जिन्होंने ज्यादा हूं इन्फ्लुएंस करी पीछे या धकेलन में कह सका वह सोसाइटी थी शायद।
0: अच्छा।
1: ये माइंडसेट थो लोगों को, क्योंकि मारी कम्युनिटी थी, गुजर बकरवाल कौम थी, यो करनो एक बहुत इनाना
0: टफ टास्क है।
1: जी जी बहुत मुश्किल है। एक पूरा खानदान थी बाहर निकल गया, कोई
0: अपॉर्चुनिटीज काट इनोवेशंस की।
1: एक कुड़ियों को तो फिर ज्यादातर वही है ना कि कुड़ी नहीं
0: ठीक
1: इत वही हमारे वास्ते बाउंड्रीज ही या कुछ है चीज ये कुड़ी नहीं कर सकती, या पढ़ाई भी ना ना किधे किसी हद तक ही करवाई, उसके बाद शादी कर लियो, कोई एक वो हमारी कल्चरल वो चीज बनी हुई है, एक सोसाइटी ने अपना माइंडसेट वैसे बनाई हुई है, फिर उस बीच निकल गया या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करनो यो थोड़ा जो

0: हमेशा माइंड में यूज थट्टी हो जाए कि लड़का ही ना पढ़ना, लड़को ही जॉब करेगा, लड़को कार
1: वही
0: संभालेगा,
1: कमाएगा।
0: लड़की ना कार सामने है। तो
1: ठीक,
0: इस वजह तो लड़की को माइंड सेट वो बने हुए कि अगर मैं 10वीं तक भी पढ़ लियो, 12वीं तक पढ़ लियो तो मेरा
1: बहुत है,
0: काम चल
1: सफिशिएंट
0: जाएगा,
1: है।
0: मेरा जरूरत नहीं है जॉब करने की, मेरा जरूरत नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की।
1: ठीक। अंजुम जी, क्या मेंटोरशिप या रोल मॉडल्स की कमी भी एक वजह है कि सही गाइडेंस नहीं मिलती हमारी लड़कियां ना?
2: जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये अभी एक ऐसो कैसे कम प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में,
1: एस्पेक्ट
2: क्योंकि
1: है।
2: आस्पेक्ट है, क्योंकि पहला तो कुड़ियां ने जान नहीं देता, फिर वो कौन वैगो जड़ो अगे आ गया, उन्होंने ना दसे को ना ठीक है तुम कर सके, क्योंकि वो देखो उसने कियो बहुत ज़्यादा कम लोग की। द वे भी ऐसा ही मेरा, वैसे ऐसी फैमिलीज थी जिनको पता था चलो ये तो कर लेंगा, या कोई हमारा जिन्हें ना असल में करने लोड़ है, जिन वास्ते एक पाथवे है, जिनके को एक असल माइंड सेट है, एक प्लान है प्रॉपर जो कर सके, जिनके को काबिलियत है, वे
1: ठीक,
2: कितने कितने पीछे नहीं लगा भी, क्योंकि उन्होंने कोई गाइड करने वालों नहीं है, या उनके को कोई रोल मॉडल है नहीं किसने के करो, उन्होंने यही कह कि कैसे कि यो तो कर सके मगर तम नहीं कर सकता, किधर ना किधर यह चीज उन्होंने दसी जाए, मगर यो गलत है। कर हर कोई सके, हर किसी में कैपेबिलिटीज नहीं, टैलेंटेड भी हमारा हमारी कम्युनिटी का कैसे गुजर बकरवाल कम्युनिटी का लोग बहुत ज्यादा अगे जी लगा भी, पढ़ाई में बहुत ज्यादा अगे जी लगा भी, बहुत इन्फ्लुएंस भी वहीं लगा भी, बट हाँ वही सोसाइटल प्रेशर
1: ठीक,
2: या माइंडसेट चीज वो चेंज करे लगो भी किधर ना किधर, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत इन्हें ना एक ट्रैक होगी या कोई रोल मॉडल वह हमारे वास्ते है जो दस है इन्हें ना नहीं सही है तुम इस रावर चलो तुम जा सकी, हम पहले ही उन्हें ना डीमोटिवेट कर लिया, पहले ही पीछे धकेल लिया, वह चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे लगी, वे आगे जा नहीं सकता इस।
1: प्रोग्राम ना आगे बढ़ाने से पहला एक और नगमो थारे तक पहुँचा दिया, ते के सुनना चाहेंगी?
0: मसरत नाज की आवाज में कोई भी
1: ठीक है, मसरत नाज की आवाज़ में यू गीत हम थारे तक पहुँचा रहे हैं।

0: नरगिस जी 18 हिसाब ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होनो एक लड़की वास्ते कितना जरूरी है।
1: मैंने लगा कि आज का दौर माते लड़की हो या लड़को हो वे हर इंसान वास्ते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मुझ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसो दौर आ गयो है कि कंपटीशन मुझ ज्यादा है किसी भी चीज में, चाहे वो खान पीन मा लाण मा कुछ भी। ते इंसान सिर्फ जत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होयो वो ताई इंसान अगे भी मजात इंसान का माइंड जो बन गयो के मैंने कुछ करना है अगे बढ़ना है, उस तो बाद ही इंसान बाकियां वास्ता भी कुछ कर सके। फॉर एग्जांपल एक लड़की एक औरत का माइंड बन गयो कि मैंने कुछ करना है, उसने अपनो पाथ क्लियर कर लियो कि मैंने जिंदगी में जॉब करनी है, बिजनेस करना है, टारगेट सेट कर लियो, वो अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी उस तो बाद ही वह चार लड़की और ना वह जॉब दे सके, उन्हें की हेल्प कर सके, अपना बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकेगी। अगर
0: रोल मॉडल का तौर
1: पर रोल मॉडल भी बन सके कि अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुई तो फिर मतलब माइंडसेट भी ऐसा है ना कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज्जत भी ज्यादा।
0: अंजुम जी थारा ते सवाल कि गुजर लड़कियां ना कारोबार की तरफ आने वास्ते सबसे पहले स्टेप के लेना।
2: अगर देखियो जे तो पहलो स्टेप हमना कुड़ियां ना नहीं लेने की जरूरत, शायद पहलो स्टेप पेरेंट्स ना लेने की जरूरत है, माँ बाप ना, पहलो स्टेप सोसाइटी ना लेने की जरूरत है। वे अपनो माइंडसेट चेंज करी एंड माँ बाप ना यह एक समझण की जरूरत है कि मारी बच्ची कर सके, उस पर यकीन करण की जरूरत है। बाकी अगर वे करनू चाहवी उन्होंने पतो है हम के करन लगा या हम के करनू चाहवा वे कर लेंगा किधर ना किधर। मगर जो पहलो स्टेप है वो या पहली हम कह सक चीज जी डिपेंड करे वह फैमिली ते सोसाइटी करे, वह अगर उन्होंने पुश करी तो वे कुछ भी कर सकी। चलो सोसाइटी ने अगर किधर ना किधर हम उस वे नजरअंदाज करा क्योंकि बाद में सारा ही साथ दी सारा ही कहेंगे चलो तुम सही करी लगा। पेरेंट्स ना या फैमिली ना बहुत ज्यादा जरूरत है उन्होंने पुश करन की। पहलो स्टेप शायद बहुत ज्यादा जरूरी मारी कम्युनिटी में अगर देखियो जाए गुजर बकरवाल कम्युनिटी में यही बहुत ज्यादा जरूरी
0: है। नरगिस जी सब्जेक्ट्स की अगर हम गल करें ज्यादातर आर्ट्स या मेडिकल जो है यू इसको हमने पतो है, लेकिन अगर हमने बिजनेस करनी है उसके वास्ते हमने फिर कॉमर्स के नेड़े जानो पाएगो, फिर मैनेजमेंट के नेड़े जानो पाएगो, कितने ना कितने कैरियर काउंसलिंग की भी कमी है हमारी बिरादरी में।
1: हमारी बिरादरी में सिर्फ ये पता है कि एक साइंस हुआ है तो एक आर्ट्स हुआ है,
0: ठीक, और कोई सब्जेक्ट
1: नहीं। दो सब्जेक्ट को पता है, करियर काउंसलिंग नहीं है ना, मतलब आजकल कॉलेज में स्टार्ट किया है काउंसलिंग लेकिन वो लगा है कि ये फजूल है। और ना दो सब्जेक्ट है तो अलावा फाइन आर्ट्स है, उसमें हम पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी सीख के म्यूजिक सीख के हम अपना बिजनेस वो तो भी स्टार्ट कर सका, लेकिन वो ये है कि करियर काउंसलिंग नहीं। और यो सब्जेक्ट जो है उन्हें भी यो दस्यो है कि लड़का ना के लेना है लड़की ना के लेना है। जैसे कॉमर्स है बहुत रेयरली लड़की सब्जेक्ट चूज करे कॉमर्स ना कि लड़का ना बिजनेस करना है इसना बैंक्स में जाना है तो फिर लड़को ही लेगो, लड़की ने या आर्ट्स लेगी या साइंस लेगी। वही कैरियर काउंसलिंग मैंने लगा कि हमारे अपनी कम्युनिटी में जरा पढ़िया लिखा नौजवान है या पढ़िया लिखा लोग हैं उन्होंने जाके डिस्ट्रिक्ट तू ग्रां जाके उन्होंने काउंसिल करना चाहिए। दूर दराज का जरा इलाका है उन्होंने बच्चा ने नहीं पता कि हमने दसवीं पढ़ ली माशाल्लाह जरा पास हो गया उन्हें उस तो बाद हमने के सब्जेक्ट लेना चाहिए, उन्होंने काउंसलिंग करनी चाहिए पढ़े लिखे नौजवानों ने जाके कि तम इस रंग कर सकें उस रंग थारो इंटरेस्ट किस चीज़ में तम कड़ो सब्जेक्ट तम असल पढ़ सकें उन्होंने काउंसलिंग करनी चाहिए।
0: ठीक थारे ते पूछूंगा अंजुम जी रूआ थ्रेड्स अगर इसना आगे बढ़ाना है और मॉडर्न जड़ी इस कड़ी जरूरियात हैं नेसेसिटीज़ हैं उन्हें का हिसाब ने ढालना है फिर फैशन एंड आर्ट को भी इसके बीच एक एस्पेक्ट होना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, फैशन को तो ऑलरेडी है इसमें,
0: ठीक,
2: क्योंकि हम फैशन के नाल ही चल रहा सारो एसोसिएटेड उसी के नाल है यो क्लोथिंग
0: ब्रांड के नाल।
2: जी बिल्कुल, तो रह गयो अगर तमनी आर्ट को क्यों आर्ट एक पहली गलत है आर्ट इतु ही दिस जाए अगर देखियो जाए क्राफ्ट प्रोडक्शन यो किस तरीके नाल के चीज बने उसकी डिजाइनिंग बेहतरी अगर सब थी पहला हम ना देखनो है यो बेहतर है हमारे वास्ते नहीं है के चीजें के नहीं पहला वो आर्ट उतु ही दिस जाए फिर बाकी अगर इस थी अगे जाके हमने देखनो है या जेड़ो है हमारी कश्मीर में हैंडवर्क है बाकी चीज है ये सारी चीज इसमें एडअप होनी है क्योंकि फैशन में अगर
0: मार्केट रिक्वायरमेंट का हिसाब ना
2: तो मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब ना हमने चलनो है तो हैंडीक्राफ्ट तो सबसे बेस्ट चीज है जेड़ी इस टाइम कश्मीर में सबसे बेस्ट चीज लगी लगी हुई वो तो एडअप
0: उसके नाल ना ये सारी चीज शुरू कर सके
1: जिसना बार करू नहीं निकलनो जेडी कार बैस के अपना कार ना भी संभालनो चाहे लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए उसके वास्ते ये सब तो बेस्ट है।
0: ठीक,
1: हुण ऐसो भी नहीं के नेटवर्क नहीं मतलब हर जगह
0: हाँ।

0: अलग का मैं नेटवर्क पूछ के,
1: बिल्कुल
0: बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जोड़ा वर्क फ्रॉम होम वो अपॉर्चुनिटी दें और लड़कियां ना पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी दें। मैंने लगे कि उन्होंने घर बैठ के मतलब अगर भी कमाना चाहे वे अपना अपना अपना करना सपोर्ट करना चाहे उन्हें वास्ते ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
1: बिल्कुल
0: बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज बिचू नाइट शिफ्ट हुए हम अपना लैपटॉप रख लिया एक नेटवर्क को एक रेगुलर अगर सहूलियात हुए हम आसानी नाल कमा सकें जो फुल टाइम जॉब जितना कमा सके एक इंसान हम पार्ट टाइम जॉब अगर करांगा ऑनलाइन कार बैस का हम उतना ही सेम कमा सका।
1: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर भी अपलोड करके हम चीज उनके ना टाइप करके
0: बिल्कुल
1: बेच सका।
2: ई-कॉमर्स जी,
1: ई-कॉमर्स
2: उसने ही जी अगर उसके तरफ जरा ज्यादातर आज एसोसिएटेड ही लोग उसे के नाल जिहड़ी यंग यूथ है उन्होंने शायद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है ई-कॉमर्स की। वे प्रोडक्ट अपना सेल कर सकें थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हमारे को सोशल मीडिया भी है, हमारे को बहुत सारा ऐसा ट्रैक्स है जरा वो उसका ई-कॉमर्स वो कर सके एंड उसमें बहुत ज्यादा अच्छो प्रॉफिट मार्जिन भी, वो भी बिजनेस ही है
1: ठीक
2: बहुत अच्छा, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑन या है कि काफी ज्यादा है ऑन इसकी अवेयरनेस थोड़ी जरूर है हमारी
1: ठीक
2: कम्युनिटी में ज्यादा
1: ठीक ठीक ठीक
2: ये
1: ठीक
2: किस तरह वह के वह एक गाइडेंस। बाकी यो बेहतरीन है अगर यो भी कोई करना चाहे क्योंकि सारा आज प्रेफर करी मार्केट जान थी पूरो एक अपनों दिन जाया करन थी ऑनलाइन शॉपिंग की ज्यादातर मैक्सिमम यही चीज चले लगी भी शायद कितने ना कितने।
1: गीत थारी खिदमत में पेश है, सुन लिया तो फिर आगे गल करा।

0: गवर्नमेंट स्कीम्स की कितनी जानकारी है नरगिस जी हमारा लोगों ना है कुछ
1: जानकारी है भी लेकिन उसको फायदा नहीं लेता लोग
0: ठीक
1: मतलब जानकारी हुई भी कि उन्होंने लगे को हमने लगे को कि हमने आने के कार अगर पहुँचा छोड़ी भाई बड़ी गल है लेकिन उसके वास्ते एक पूरा प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस तो निकल नो पाए फिर जाके हम ना वो स्कीम उसको हम फायदा चाह सकें लेकिन वही है ना कि हम कार बैठ के अगर सोचेंगे कि स्कीम है और गवर्नमेंट आने के हमने दे छोड़ेगी
0: वो पॉसिबल नहीं
1: वो पॉसिबल नहीं
0: देखो जिस तरीका के पर गवर्नमेंट ने कहा किसी बंदा ने स्पॉन्सर कियो तमने अप्लाई कियो तम स्पॉन्सर हो गया उसके बाद तमने जो DPR देते हो जो थारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी उसके बीच तम एक हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोई एस्टेब्लिशमेंट कायम करना चाहिए था लेकिन ऊँ अंदर के हो तमने लोन लियो लोन के बाद तम घर आके किसी ब्याह के बीच तमने वो खर्चा लियो कंस्ट्रक्शन का किसी काम में खर्चा लियो या गाड़ी ले आया कोई और किसी फजूल खर्ची में खर्चा लियो तो वो पर्पज सर हुआ है उस तरह
1: बिल्कुल नहीं जिस पर्पज हम लोन अप्लाई करा अगर उसे पर्पस वास्ते वो आन के पूरा करा तो फिर उस लोन को फायदा है
0: जी
1: जिड़ी चीज हम करा वो धोखो देना अपना आपने भी धोखो तो गवर्नमेंट ने भी धोखो
0: क्योंकि थारे ने काफी गल होगी और प्रोग्राम की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस में हम टाइम के बाहर नहीं जा सकते कुछ इसी चीज आखिर में पहला अंजुम जी तम मारा सामी ने कहना चाहता है
2: जी बिल्कुल हूँ एसोसिएटेड हम बिजनेस नाल दे हूँ शायद इसी बारे में कहना चाहूँगा मारी जिड़ी यूथ है यंग यूथ है जेन जीज कह सका मारी एज गई या जेड़ा भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का बच्चा ही उनको अगर तुम कुछ करना चाहवी करो कोई इस टाइम अगर सोसाइटी इधर देखा या माइंड सेट इधर देखा कि ना कि हम लैग कर जाएंगा पीछे रह जाएंगा तुम अपना अपना खुद पुश करो एक वो पहलो स्टेप है वो जाओ एक फरी असल तरीका ना एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आओ खुद पर यकीन रखो बाकी सारा कुछ पॉसिबल है कोई जॉब दर जानू चाहे कोई बिजनेस दर जानू चाहे तुम करो असल तरीका ना सारों कोई लास्ट में सब सपोर्ट करी बट पहला अपना अपना आप सपोर्ट करो पीछे ना रहो या ना देख के रहो कि आम शायद किधर ना किधर हमारी कम्युनिटी लैग करे लैग किधर नहीं करती बस मारो माइंड सेट है जो लैग करे लगो भी हमें उसना चेंज करने की जरूरत है काफ़ी ज़्यादा उसना चेंज करो आगे बढ़ो क्योंकि अल्लाह ताला ने सहूलियत दितो भी है अल्लाह ताला ने दिमाग सारा ना माइंड दितो भी है हर किसी ने कैपेबिलिटीज ही काबिलियत है हर किसी ने उसना अगे लो अपना छे ना रो अपनी कम्युनिटी में ना ले गए या लोगों ने या सोसाइटी ना ले गए तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वास्ते बस
0: नरगिस जी तम कुछ आखिर में कहना चाहता हूँ स्पेशली क्योंकि तम थारे तो शुरुआत में मैं पूछो कम्पिटेटिव एग्जाम्स का हवाला ना जो जिस वास्ते तम तैयारी करें भी लगा तो फिर बिजनेस बिच में आगे जो एक थारो सब्सिडरी ऑप्शन है प्राइमरी तो थारो वो है ना कम्पिटेटिव एग्जाम्स आलो उसी वाला ना कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि बिजनेस का वाला ना तो इन्होंने काफ़ी कुछ कह छोड़े
1: लास्ट पर यही कहना चाहूँगी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आजकल हर मैंने लगा कि जो पढ़े लिखे इंसान जिसने ग्रेजुएशन किया है हर दूजो बच्चो उसना करा ही लगो
0: ठीक
1: मेरी जी मैसेज हुआ कि वह उन्हें पेरेंट्स वास्तव है कि जड़ा या उन्हें लड़कियां वास्तव है कि खासकर जड़ा स्कूल में एडमिशन ले के फिर ड्रॉप आउट लें
0: अच्छा
1: मेरे उन्हें वास्तव वह मैसेज हुआ कि देखो वो हो गयो पहला एडमिशन लेना गवर्नमेंट आज मिड डे मील भी दिया है यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करा है फिर भी कुछ साल ले के फिर वो ड्रॉप आउट लेना कि इसना फलानो कम थो या नहीं कर सकी मेरे सिर्फ उन्हें पेरेंट्स वास्ते या उन्हें लड़कियों वास्ते मैसेज हुआ कि तुम ड्रॉप आउट वो स्टॉप करो
0: ठीक
1: क्योंकि वो धोखो है अपना आप नाल ते गवर्नमेंट नाल धोखो है
0: ठीक अगर आगे बढ़ना है तो उस वास्ते पढ़ना है
1: अगे जाके जरूरी नहीं कि हम जॉब करेंगे

0: जरूरी नहीं कि
1: ठीक,
0: हम बिजनेस करांगा।
1: मतलब अच्छा पढ़िया लिखा है तो
0: पढ़िया
1: कुछ भी
0: लिखिया
1: कर
0: वास्ते
1: सका।
0: अपनों वो अपना वास्ते जरूरी है, पढ़ना लिखना जो अपना वास्ते जरूरी है, गवर्नमेंट की स्कीम ही गल है, बाकी उन्हें वास्ते भी है कि जिन्हें नहीं पढ़ा सकता कार में उन्हें वास्ते गुजर बकवाल हॉस्टल प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, उसमें
1: ठीक,
0: चला छोड़ो, सारा
1: बेशक
0: कुछ फ्री है, बस तुम उन्हें ना स्कूल तो ड्रॉप आउट ना लियो।
1: खुद गुजर बकरवाल हॉस्टल में रहे हैं तो उसने प्रमोट करने लगा।
0: जी प्रमोट नहीं करती, लेकिन मैं अपना आसपास इतना लोग देखे हैं
1: फाइनेंशियल
0: कि
1: कंस्ट्रेंट्स की वजह से वे
0: बिल्कुल
1: रोक छोड़ी
0: उसकी
1: बचाना।
0: वजह तो उन्हें को ना हजार एक्सक्यूज होएगा कि इस वजह तो ड्रॉप लियो, इस वजह तो ड्रॉप लियो, कि वे सिर्फ एक्सक्यूज है, मेरे को एक्सक्यूज मुझ सारा है, लेकिन उस ना एक लड़की ने प्लान की वजह उन्हें को कोई नहीं हो सा है, लेकिन एक्सक्यूज उन्हें छुड़ाने की वजह हजार एक्सक्यूज देंगे कि इस वजह तो छुड़ा छोड़ो। अगर तुम ना इतना ही है कि तुम नहीं फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट कर सकता, गवर्नमेंट इतनी स्कीम देती है, तुम उन्हें को फायदा लियो।
1: नरगिस जी और अंजुम जी,
0: जी
1: तब हमारा प्रोग्राम आया, हमने थारे दे देख के एक प्राउड भी फील हुआ लगो, फख्र भी महसूस हुआ
0: शुक्रिया।
1: लगो। हमने लगा कि हमारी जड़ी आने वाली नस्ल है या हमारी जड़ी इस कड़ी की जड़ी जनरेशन है वह अलहमदुल्ला सही ट्रैक के पर है,
0: बिल्कुल
1: और वे अपनी कैपेबिलिटीज़ ना, अपना पोटेंशियल ना और
0: पहचानिए।
1: अपनी काबिलियत ना पहचान रहे हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: उसना सही डाइवर्जन दे रहे हैं, सही डाइवर्ट कर रहे हैं, गलत
0: बिल्कुल
1: डाइवर्जन पर नहीं ला रहे हैं। ये हमारे वास्ते प्राउड की गल है। इंशाल्लाह फिर तम ना प्रोग्राम में दावत देंगे, और हमारी गुजारिश होगी कि तम इस अपनी जबान के ना, इस अपनी माँ बोली के नाल जुड़िया रहो, इसमें जिस तरह भी कंट्रीब्यूशन कर सकें करो। तम बिजनेस
0: चलिए
1: करो, जो करो वो तो थारो एक मतलब फाइनेंशियल आस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा इस जबान को थारे पर बहुत सारा हकूक है, मदर टंग की हो जाए
0: बिल्कुल
1: इस ना मादरी जबान, तो इसका फ़रोग में भी तम इंशाल्लाह शामिल रहो। अल्लाह थारी उम्र में बरकत अता फरमाए और तम ना कामयाब कामरान करे। थारो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा स्टूडियो में आने वास्ते, तुम्हारे ना गल करने वास्ते।
0: बहुत शुक्रिया।
1: समीन अगर नगमो सुन लिया।

0: मैदान के बाहर खड़े होकर दर्शक नहीं बने रहेंगे बल्कि खुद अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। चार दिनों के इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर लगने वाला हर सर्व, हर स्पाइक और हर डाइव इस बात का ऐलान है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा तरक्की की राह में चुनौतियों का मुकाबला कर रही है और वह देश की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बनकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि टैलेंट को निखारने में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स काउंसिल को कामयाबी हासिल हुई है और ये लीग एक नए स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने में जरूर मदद करेगा।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कपवाड़ा जिला का टंगदार करना में एसएम हिल व छोरिया गाथा कम्प्लेक्स को इफ्ता कियो। एलजी ने कहे कि यो निबटो बैटलफील्ड टूरिज्म न बदो देन में अहमियत को हामिल है। मनोज सिन्हा ने कहे कि ऐसा इकदाम नाल सकाफती विरसा न तहफ़ के नाल नाल सरहदी इलाके की तरक्की भी यकीनी बने।
2: भारत की सैन्य विरासत वीरता की गाथा है, उसे शब्दों में बयां करना ये थोड़ा कठिन काम। लंबे समय तक वो कहानियाँ आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाती थी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है, इसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हुई वजारती कौंसिल की मीटिंग में जीना कोट श्रीनगर में कायम 450 MVA गंजाई शाला ग्रिज स्टेशन की सलाहित बढ़ा गए 780 MVA करण की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 67.6 करोड़ रुपये की लागत आवेगी। कौंसिल ने 132 KV पामपुर रावलपुरा ते रावलपुरा बेमना ट्रांसमिशन लाइन की तजदीद कारी नवी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 5.47 करोड़ रुपये की लागत आवेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहे कि इन प्रोजेक्टों को मकसद श्रीनगर ते मलका इलाका में बिजली का बुनियादी ढांचा न मजीद मस्तकम करनो है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक नाला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में वाटर ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा न बाधो देन ते एक फाल नक्शो रात तैयार करने ते मतलब अमूर गोज जायजो लियो। मीटिंग में जम्मू कश्मीर का तमाम बड़ा दरियाओ में जदीद तर्ज को एक देरपा ते माहौलियात दोस्त वाटर ट्रांसपोर्ट निजाम वजूद में लान का हवाला ते इस वर तबादलो ख्याल कियो गयो। चीफ सेक्रेटरी ने मुतलका महकमा ने हदायत दी कि वे इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाल तालमेल कायम रखे। तालीम का मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहे कि तुलबा हुकूमत की तरजीह नई दिल्ली में नामा नगारा नाल गल करता हुआ धर्मेंद्र प्रधान ने कहे कि नीट यूजी इम्तहान अगला साल ते मौजूदा ओएमआर वर मुबनी तरीका कार के बजाय कंप्यूटर वर मुबनी टेस्ट के तरीका नाल करायो जाएगो। तालीम का वजीर ने अतराफ किया कि एनटीए ना वाजिया असलात की जरूरत है।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा।
1: यह गल काबिले जिक्र है कि नीट यूजी 2026 को दोबारा अमतान अगला महीना की तारीख न करायो जाएगो। यो खबरनामो आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। यो खबरनामो तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज आने आयर ते डीटीएच पर भी सुन सके। जम्मू कश्मीर हज कमेटी का जेर इतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी ते जेकेपीएससी इम्तहानात की खातर तैयारी करने वाला ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के वास्ते दरख्वास्त तलब की है। इस बारे में जेएंडके स्टेट हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करते हुए दस्यो।
5: 50 बच्चे इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे, जिसमें मेस का जो खर्चा है वो बच्चों को बर्दाश्त करना है और मिनिमम जो मेंटेनेंस फी रखते हैं 1200 के करीब। तो जो बच्चे AY हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। इसमें खाली हम मेंटर रखते हैं जो इन्हें गाइड करते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ते हैं लाइब्रेरी रीडिंग रूम में बैठ के और हम एग्जाम लेते हैं वीकली या 2 हफ्तों के बाद या मंथली हम टेस्ट सीरीज का कंडक्ट करते हैं और हमारा मेंटर रहते हैं। ये आम बेसिस ऑफ मेरिट जो हज कमेटी की वेबसाइट है जो कि shc.org उस पे अवेलेबल है।
1: जम्मू कश्मीर का डिग्री कॉलेज में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से 5 साल इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम के वास्ते दाखिला को अमल शुरू हो गया है। तफसीलात देता हूँ जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट

0: कॉलेज प्रोफेसर आजाद बशीर ने आकाशवाणी न्यूज से नगर न दस्यो।
1: मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें jkadmissions.in और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार, एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी का सारा जिला में सिविल ते पुलिस इंतजामिया का एहतमाम नाल कनी कनी सरगर्मी जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पैगाम,
2: स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बारे में डिप्टी कमिश्नर अंतनाग डॉक्टर बलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता में क्यों।
3: अगर आप देखेंगे जिला अनंतनाग ने कितना काम किया है और अगर आप स्टैटिस्टिकली मुझे बताएंगे अभी तक जितने हमने इवेंट किए हैं वो मोर देन 8000 इवेंट है, जिसमें से मोर देन 7.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हर किसी जगह से, बिल्कुल पंचायत और विलेज लेवल तक। पुलिस की जानिब से अगर आप देखेंगे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है जो पेडलर थे और कितनी बरामदी हुई है डिफरेंट नाकाज पे, दिस इज अ मैसेज दे आर वेर कमिटेड, इट हैज अ सिंसियरिटी इन इट, जहां पर सब लोग इस चीज को जान लें कि दैट नशा जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए सामने आई है।
0: वजीर तालीम सिकिनेतू ने तुलबा न म्यारी तालीम फराम करन ते दूरदराज इलाकों का तुलबा न मुकामी सतह पर म्यारी तालीम फराम करन का सरकार का अजम को आदो की है। उधमपुर जिला का मजाल्टा इलाका में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नवी इमारत को इफ्ताह करन का मौका पर उन्होंने कॉलेज का अमला पर जोर दिया कि मंशात ते पाक समाज का क्याम के वास्ते तुलबा में नशाखोरी का मजर असरात ते मतलब जरूरी बेदारी पैदा करें। उन्होंने कहा कि नौजवान कौम की तामीर में एक अहम करदार अदा करें, लिहाजा उन्होंने चाहिए कि वे समाज न इस बिदत पाक करन में एक तामीरी रोल अदा करें। इसके नाल ही यो खबरनामो मुक्यो। अगर अगलो खबरनामो आकाशवाणी श्रीनगर ते शाम 6:05 पर कश्मीरी में नशर वेगो। देव सामिन इजाजत, खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदु का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए

0: प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ. जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زہ ارہٹ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اکھ ہتر اشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ سمن محترم 5:05 سپد پیش پروگرام گرمی بائن ہند خطر
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कनात की तजवीज तेजी से रूबे अमल लाई जा रही है। वादी में बिजली के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के इकदाम। आबी ट्रांसपोर्ट को नई जिला अता करने का मंसूबा। और डिजिटाइज्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में कई सुकम। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।

0: अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 9018074333।
3: 9018074333।
4: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
5: तो क्या शकने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
4: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
5: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
4: मगर ये है आज सठा द्रो?
5: हाँ ना ना सुई कम मत मज मुश्क ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
6: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनायु सेहत मंद प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस मज दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप तक।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
9: पर क्या कर सकते हैं?
8: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
10: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
12: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
11: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
12: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
11: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
12: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
11: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
12: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
11: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
13: शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। सभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर तवानाई की सलामती को मजबूत बनाने के एक अहम एजेंडे के साथ आज 6 रोजा गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए। वाजिर है कि मौसूफ मुतहदा अरब अमारात समेत 4 यूरोपीय ममालिक, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड और इटली का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने UAE दौरे को निहायत बामकसद करार देते हुए कहा कि इससे हिंद UAE हमजहत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। वजीर आजम मौसूफ के बकौल तवानाई, दिफा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और जदीद टेक्नोलॉजी समेत कई अहम शोबों में आज बड़े माहिदों को हतमी शक्ल दी गई, जबकि UAE की जानिब से भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान दोनों मुल्कों के इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। इधर मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 3 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जो गुज़श्ता 4 बरस के दौरान पहली बड़ी बढ़ोतरी करार दी जा रही है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये फी लीटर हो गया है, जबकि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत दीगर बड़े शहरों में भी नरखों में इजाफा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे, मशरक़ के वस्ता में जारी कशीदगी और रिफाइनरी शोबे पर माली दबाव पड़ने के बाद से फैसला लिया गया है। माहरीन का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अशियाई जरूरिया की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होने का खदशा है। इसी दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुल्कगीर ईंधन बचाव मुहिम के तहत कई अहम इकदाम का ऐलान किया, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत, जज साहिबान के दरमियान कार पूलिंग और रजिस्ट्री अमले के लिए वर्क फ्रॉम होम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक मुतफर्क समाअत वाले दिनों में मुकदमात की समाअत अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, जिसके अलावा रजिस्ट्री के हर शोबे के 50% तक के मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की इजाजत दी जाएगी। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि अदालती उमूर में खलल ना आए इसके लिए लाजमी अमला दफातर में मौजूद रहेगा, जबकि जज साहिबान ने ईंधन की बचत के पेश नजर कार पूलिंग को फरोग देने का भी इत्तेफाक कर लिया है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किदा वजारती काउंसिल के इजलास में श्रीनगर के लिए 93 करोड़ रुपए की मालियत के बिजली के बुनियादी ढांचे के मंसूबों को मंजूरी दी गई है। इजलास में जैनकोट ग्रिड सब स्टेशन की सलाहियत 450 एमवीए से बढ़ाकर 780 एमवीए करने की मंजूरी दी गई, जिस पर तकरीबन 67.66 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसके अलावा 132 केवी पांपुर रावलपुरा और रावलपुरा बेमिना ट्रांसमिशन लाइनों की अपग्रेडेशन के लिए 25.47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद श्रीनगर और मुल्क के इलाकों में बिजली के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाना, ट्रांसमिशन सलाहियत में इजाफा करना, बिजली की खलल अंदाजी को कम करना और सार्फिन को ज्यादा काबिल एतमाद बिजली निजाम फराहम करना है। ये मंसूबे खुसूसन ज्यादा लोड के दौरान ग्रिड के इस्तेहकाम और बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। अब एक और मौजू समन वादी कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर शहर में हर गुजरने वाले दिन के साथ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव इस कदर बढ़ रहा है कि लोग सफर करने में खौफ महसूस करने लगे हैं। वाजिर है कि 4 मई को दरबार मुख्य दफातर श्रीनगर मुंतकिल होने के बाद से श्रीनगर और मजाफात की सड़कों पर ट्रैफिक में होशरुबा इजाफा हुआ है, और जिस एतबार से रोजाना नई नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी जा रही हैं उससे यह अंदाजा लगाना चंदा नामुमकिन नहीं कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक एक आसेब की शक्ल इख्तियार करेगा। रही बात जम्मू शहर की, तो वहां की हालत इससे भी गैर है। ऐसे में हुकूमत का यह फैसला कि वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन में हसब जरूरत आबी ट्रांसपोर्ट को बड़े पैमाने पर जिला बख्शी जाएगी यकीनन काबिले सताइश है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में फैसला लिया गया है कि वादी में दरियाए जेहलम पर पांथा चौक से लेकर वुलर तक लगभग 76 किलोमीटर तवील एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्किट कायम किया जा रहा है। इसी तरह जम्मू में भी वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की काविशें शुरू हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
3: जम्मू कश्मीर में जल्द इनलैंड ट्रांसपोर्ट यानी आबी नकलो हमल खिदमात शुरू होने जा रही है, जिसके तहत दरियाई जहलम चिनाब और रावी में जदीद क्रूज और वाटर ट्रांसपोर्ट निजाम कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। इस मंसूबे का मकसद माहौल दोस्त सफरी सहूलियात, सयाहत को फरोग देना, रोजगार के मौके पैदा करना और दरियाओं के किनारे नई मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाना है। हुकाम के मुताबिक दरियाए जहलम पर नेशनल वाटरवेज 49 के तहत पांथा चौक से वुलर झील तक तकरीबन 76 किलोमीटर तवील रिवर क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस रूट पर 8 फ्लोटिंग जेटीज तामीर की जा रही है, जिनकी तकमील जुलाई 2026 तक मुतवक्का है, जबकि मुतालिका जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर जुलाई 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। दरियाए जहलम में महफूज किश्ती रानी के लिए ड्रेजर्स के जरिए दरिया की सफाई और गहराई बरकरार रखने का काम भी जारी है, ताकि सफर बगैर रकावट जारी रह सके। मंसूबे के तहत 20 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाले हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स भी खरीदी जा रही है। इन किश्तियों का कॉन्ट्रैक्ट मई 2026 तक अलॉट होने और मार्च 2027 तक इनकी फराहमी मुतवक्का है। जम्मू खिते में दरियाए चिनाब पर नेशनल वाटरवेज 26 के तहत रियासी से अखनूर पोर्ट तक तकरीबन 9 किलोमीटर तवील क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जहां 2 जेटीज की तामीर जारी है। इसी तरह दरियाए रवि पर नेशनल वाटरवे 84 के तहत जम्मू के सुहिर इलाके में 15 किलोमीटर तवील रिवर क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जहाँ जेटी तामीर और नेविगेशन सहूलियात पर काम जारी है। वाजह रहे कि गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक आला सतही इजलास में इन मंसूबों की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के रोडमेप का जायजा लिया है। इजलास में IWAI, ASCS, PWD के चेयरमैन सुनील पालीवाल, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और IWAI हुकाम ने शिरकत की। इजलास में पुलों के नीचे कॉफर डैम्स हटाने, ST और LT बिजली लाइनों को बुलंद करने, टर्मिनल्स पर बिजली व पानी की फराहमी, रास्ता सड़कों की तामीर और अहम घाटों पर سیوریج ٹریٹمنٹ سہولیات، درختوں کی کٹائی اور دیگر تعمیراتی اجازت ناموں سے متعلق معاملات پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ

पेश किया जा रहा है। ताहम जमीनी सतह पर सामने आने वाले हकायक इस दावे की नफी करते नजर आ रहे हैं। जहां कुलगाम के तमाम इलाकों तिवसर नूराबाद होमशालीपुर काजीगुंड और इलाका कोंड के साथ साथ दीगर तहसील सदर मकाम में यकसान नवीयत के मसाइल ने इस पूरे अमल को एक संजीदा सवालिया निशान खड़ा किया है। ये बात नहायत तश्वीशनाक है कि नए अंग्रेजी रिकॉर्ड में खेवट जैसा बुनियादी और अहम जुज जो जमीन की मिल्कियत और खानदानी वरासत की बुनियाद तस्वर किया जाता है कई जगहों पर या तो गायब है या गलत इंदराज किया गया है, जबकि खसरा नंबरों की गलतियों जमींदारों के नामों में तब्दीलियों और दीगर बुनियादी मालूमात की कमी ने इस मसले को मजीद पीचीदा बना दिया है, जिसके नतीजे में लोग अपनी ही जमीन की शिनाख्त के हवाले से शकूक शुबात का शिकार हो रहे हैं और ऐसा निजाम जो शफायत लाने का दावेदार था खुद गैरीकनी और बेएतमादी को फरोग देता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शजना नसब जैसे अहम जुज का रिकॉर्ड से गायब होना न सिर्फ एक इंतजामी खामी है बल्कि ये एक संगीन कानूनी

0: शकूक शुबात का शिकार हो रहे हैं और ऐसा निजाम जो शफायत लाने का दावेदार था खुद गैरयकीनी और बेएतमादी को फरोग देता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शजना नसब जैसे अहम जुज का रिकॉर्ड से गायब होना न सिर्फ एक इंतजामी खामी है बल्कि ये एक संगीन कानूनी और समाजी मसला भी है क्योंकि यही अहम हिस्सा जमीन की खानदानी तारीख और वरासती तसलसल को वाजे करता है और इसकी अदमी मौजूदगी आइंदा नस्लों के लिए मिल्कियत के तयन को एक पीछीदा और मतनाज़े अमल बना सकती है जबकि वल्दियत जात और दीगर बुनियादी तफसीलात का अधूरा या गलत इंदराज इस सूरत हाल को मजीद उलझा रहा है। ये अमर भी बाइस तशवीश है कि इस नए निजाम को नाफिज करने से कबूल न तो मुतलका अहलकारों को मुनासिब तरबियत फराहम की गई है और न ही किसी मरहलावार हकमत अमली के तहत इस तब्दीली को नाफिज किया गया जिसके नतीजे में वही अहलकार जो बरसों से उर्दू जबान में अपने फराइज अंजाम देते आए हैं अब एक ऐसे निजाम में काम करने पर मजबूर है जिससे वो मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है और यही वजह है कि गलतियों का दायरा वसी होता जा रहा है। शहरदीन को जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं उनके मुताबिक जिले में सेटलमेंट के अमल का अधूरा रह जाना इस पूरे मामले को मजीद संगीन बना रहा है। जब तक जमीन की हदबंदी मिल्कियत की तस्दीक और दीगर कानूनी पहलू मुकम्मल न हो उस वक्त तक किसी भी रिकॉर्ड की हैसियत मशकूक रहती है और ऐसे हालात में मामूली अख्तिलाफात भी बड़े तनाजात में तब्दील हो सकते हैं जो न सिर्फ अवाम बल्कि निजामी इंसाफ पर भी इजाफी बोझ डाल सकते हैं। ये भी एक नाकाबिली इनकार हकीकत है कि उर्दू इस खत्ते की न सिर्फ इंतजामी बल्कि तारीखी जबान रही है और जमींदारों की एक बड़ी तादाद आज भी अपने रिकॉर्ड को इसी जबान में बेहतर तौर पर समझती है।
1: कुलगाम से फारूक राफिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर उड़ी से जफर इकबाल की इतला है कि सुखदार मोली डोगा के सार्फिन गुज़श्ता 3 माह से बिजली की सप्लाई से महरूम है जिसके बायस उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी आबादी के मुताबिक इलाके का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद अब तक न इसे तब्दील किया गया है और न ही दोबारा फाल बनाया गया है। इलाके के सार्फिन को यकीन दिलाया गया था कि उन्हें 25 केवी की जगह 63 केवी का ट्रांसफार्मर फराहम किया जाएगा पर उनका इंतजार कायम है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
7: तो क्या शक्ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्राव नहीं हुआ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में।
6: मगर यह है सठा द्रोग?
7: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
11: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा।

0: कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
1: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
0: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे वहाँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आ रहा है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: माया है। ऐसे हालात में तरक्की पजीर और उभरती हुई मईशतों का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना आलमी इस्तेकाम के लिए मुस्बत इशारा समझा जाता है। ब्रिक्स ममालिक की ये सोच इस बात की अकास है कि दुनिया को एकतरफा निज़ाम के बजाय ज्यादा मुतवाजन और शराकती आलमी ढांचे की जरूरत है, जहाँ हर खत्ते को मसावी अहमियत हासिल हो। हिंदुस्तान में इस अहम इजलास का इनेकाद इस बात की अलामत भी है कि मुल्क आलमी सिफारती सरगर्मियों में एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। इक्तिसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और आलमी रवाबित में तेजी ने मुल्क को एक मजबूत मकाम अता किया है। इसके असरा जम्मू कश्मीर जैसे खत्ों के लिए भी अहम हो सकते हैं, जहां सियाहत, तिजारत, दस्तकारी, बागबानी और नौजवानों के रोजगार से वाबस्ता शोबे आलमी ताउन से नई रफ्तार हासिल कर सकते हैं। अगर इलाकाई वसाइल को बैनुल अक्वामी मंडियों और जदीद माशी मौके से जोड़ा जाए तो जम्मू कश्मीर तरक्की, सरमाएकारी और सकाफती रवाबित का एक मौसर मरकज बन सकता है। वक्त का तकाजा यही है कि बदलती हुई आलमी सूरतहाल को सिर्फ सियासी जाविये से नहीं बल्कि इक्तिसादी, तालीमी और समाजी तरक्की के तनाजुर में भी देखा जाए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाए। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

वादी की आवाज़ इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समात कर रहे हैं। समीन ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान का मुतवस्त और गरीब तबका इस वक्त शदीद तरीन माशी दबाव का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगी सूरत हाल के असरात पूरी दुनिया की मईशत पर मुरतब हुए हैं। मशरिकी वस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचों पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को शदीद अदम इस्तिकाम से दो चार कर दिया है। समीन, इस आलमी बहरान के असरात पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले ममालिक पर ज्यादा शिद्दत से पड़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान में मसला सिर्फ आलमी मार्केट नहीं बल्कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का भी है, जिन्होंने आवाम के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ते हुए टैक्स और लेवी ने महंगाई की नई लहर वहां पैदा कर दी है। हालिया दिनों पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, उसकी बुनियादी वजह आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफा नहीं बल्कि टैक्सेस और लेवी में इजाफा है। पेट्रोलियम पर आयद लेवी में 13.91 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद ये 103.50 रुपये से बढ़कर 117.41 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। इसी तरह डीजल पर आयद लेवी 28.06 रुपये से बढ़ाकर 42.60 रुपये फी लीटर कर दी गई। इस वक्त वहां पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर तकरीबन 143.67 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिनस की सूरत में वसूल किए जा रहे हैं, यानी वहां आवाम माली बहरान से ज्यादा हुकूमती मालियाती पॉलिसियों का बोझ उठा रहे हैं। हुकूमत की दलील है कि IMF प्रोग्राम के तहत महसूलात के अदा पूरा करना जरूरी है। तहम हकीकत यह है कि हुकूमत ने महसूलात बढ़ाने के लिए आसान तरीन रास्ता इख्तियार किया है, बराए रास्त टैक्स इस्लाहात, टैक्स नेट की तौसी और FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके फौरी रेवेन्यू इकट्ठा करने की पॉलिसी अपनाई है। यह पॉलिसी वहां वक्ती तौर पर हुकूमती खजाने को सहारा तो दे सकती है, मगर पाकिस्तान की मईशत पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। समीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात नहीं बढ़ाता बल्कि हर शोबे पर असरअंदाज होता है। खुराक, सब्जियां, अदवियात, बिजली, सन्नती पैदावार और तामीराती लागत सब कुछ महंगा हो जाता है। यही वजह है कि महंगाई का तूफान शिद्दत वहां इख्तियार कर चुका है। एदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 10.89% तक पहुंच गई, जबकि माली साल 2025-26 में जुलाई से

अप्रैल तक औसतन महंगाई 6.19% रही। पाकिस्तान में आम आदमी की क़ुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है। तनख्वाहदार तबका, मजदूर और छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। IMF के साथ तयशुदा माहदे के तहत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,468 अरब रुपये इकट्ठा करने का हद रखा था, तहम पाकिस्तानी हुकूमत मई में ही इस हदफ से तजावुज कर गई है। समिन, ये सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है कि अगर टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे अपने अहदाफ पूरा करने में नाकाम हैं तो इसका बोझ सिर्फ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? पाकिस्तानी हुकूमत ने आसान तरीन रास्ते इख्तियार करते हुए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, मगर इसके नतीजे में वहाँ अवाम को मुश्किल तरीन माशी हालात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में और भी कुछ आया चाहता है, इस नातिया कलाम से फैज़याब होते हैं।

वादी की आवाज़ इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पेश किया जा रहा है। समीन, ईरान जंग के मनफी असरात आलमी इक्तिसादियात को तो मुतासिर कर ही रही हैं, लेकिन मशरिकी वस्ता की कशीद सूरतहाल ने लाखों पाकिस्तानी घरानों के बजट को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से अपने घर वालों को इरसाल करदा रकूम से लाखों खानदान अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करते हैं, ताहम मशरिक़ वस्ती में कशीदगी की वजह से सूरत हाल मुख्तलिफ होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र आती हैं। बीरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर अपने घर वालों को भेजते हैं और इन रकूमात की बड़ी मकदार खलीजी ममालिक से ही आती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान को मौसूल होने वाली 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात में से निस्फ से ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात से आता था, लेकिन मशरिकी वस्ता में जारी हालिया बहरान के बायस ये सूरत हाल बदल चुकी है। माहरीन खबरदार कर रहे हैं मशरिकी वस्ता में भर्ती कशीदगी, ऑटोमेशन और मकामी मजदूरों को तरजीह देने जैसे अवामिल लाखों पाकिस्तानी खानदानों की आमदन को खतरे में डाल सकते हैं। माशी तज़ निगार कहते हैं कि ये इतलात बढ़ रही है कि खलीजी ममालिक से मजदूर वापस भेजे जा रहे हैं, ताहम इसकी तस्दीक शुदा तादाद अभी दस्तियाब नहीं है। मुतहदा अरब अमारात यूएई पाकिस्तान की मजमू तरसीलात का तकरीबन 20% हिस्सा देता है, इसलिए अगर कमी हुई तो ये पेशरफ्त ज़र मुबादला के ज़खायर और मजदूरों के खानदानों दोनों पर दबाव डालेगी। समिन, तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मईशत का एक अहम सतून बन चुकी है जो ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देती है और पाकिस्तानी करेंसी को मुस्तहकम भी रखती है, ताहम ये निज़ाम पाकिस्तान की सरहदों से बाहर के हालात पर मुनहसर होता है। माहरीन कहते हैं कि अगर तरसीलात कम हो जाए तो पाकिस्तान में शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। समिन, जब भी खलीज ममालिक में कोई मसला पैदा होता है तो उसके असरात बराए रास्त उन खानदानों पर पड़ते हैं जो तरसीलात पर इन्हिसार करते हैं। माहरीन कहते हैं कि कुछ भी होता है तो उसका असर पाकिस्तान महसूस करता है। समिन, ये थी चंद बातें पाकिस्तान के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर इस नातिया कलाम से फैज़ याब होते

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मेज़बान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज़।
1: वादी की आवाज़। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। रात के 8:30 हो रहे हैं। आइए समाप्त करें प्रोग्राम
2: स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आगाज में चंद अहम खेल सरगर्मियों पर एक नजर। IPL में पिछले 3 दिनों के दौरान जो अहम मुकाबले खेले गए उनमें से बहुत हद तक ये वाजह हो गया कि दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने करीबन प्लेऑफ्स के लिए जगह हासिल कर ली है। बुधवार को खेले गए इस अहम मुकाबले में RCB ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ये 12वें मुकाबले में RCB की 8वीं जीत थी। 16 पॉइंट्स और एक बेहतर नेट रन रेट के बायस RCB पॉइंट टेबल पर बदस्तूर पहले नंबर पर है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने RCB के सामने 193 रनों का एक डिफेंडेबल स्कोर रखा था। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी को मद्देनजर रखते हुए RCB के लिए ये टारगेट किसी कदर आसान नहीं था। तहम चेज के दौरान किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए RCB के पास विराट कोहली यानी चेज मास्टर मौजूद थे। इन्होंने एक मरतबा फिर बिल्कुल वही करके दिखाया जिसके लिए वो कई दहाइयों से जाने जाते हैं, चाहे क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो। इन्होंने एक मरतबा फिर कैलकुलेटेड रिस्क फ्री इनिंग्स खेली जिसके जरिए से वो उस अंदाज से टारगेट तक पहुंचते हैं कि अपोजिशन को इसका पता भी नहीं चल पाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने 60 गेंदों पर 105 रन स्कोर करके टीम को बआसानी फतह से हमकिनार कराया। दीगर चंद एक खबरों पर नजर डालने से पहले मकामी खेल सरगर्मियों पर एक नजर। बारामूला स्पोर्ट्स रिपोर्ट के साथ सोफी परवेज।
3: बारामूला के हर छोटे बड़े मैदान पर इन दिनों खेल सरगर्मियां उरूज पे है। फुटबॉल, क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी के मुकाबलों में नौजवान खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। वहीं महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बारामूला के जेरे निगरान जिला भर के मुख्तलिफ जोन में Under-14, Under-17 और Under-19 के बॉयज और गर्ल्स उम्रों के तहत मुख्तलिफ तर्ज की खेल सरगर्मियां शदोमद से जारी है। जोन रोहमा रफीआबाद में Under-14, Under-17 बॉयज और गर्ल्स उम्रों के तहत खेले जाने वाले वॉलीबॉल के मुकाबलों के नतीजे कुछ यूं रहे। Under-17 गर्ल्स जुमले में हाई स्कूल बलहमा ने हायर सेकेंडरी स्कूल हद्दीपोरा को शिकस्त दी। Under-17 के ही बॉयज जुमले में हाई स्कूल रेबन ने हायर सेकेंडरी स्कूल हद्दीपोरा को नजदीकी मुकाबले में शिकस्त देकर बाजी मार ली। Under-14 के ही गर्ल्स जुमले में गर्ल्स हाई स्कूल रोहमा ने मिडिल स्कूल नानगारान के खिलाफ बाजी मार ली, जबकि Under-14 के ही बॉयज जुमले में हायर सेकेंडरी स्कूल रोहमा ने हायर सेकेंडरी स्कूल बलहमा के खिलाफ बाजी मार ली। जोन रोहमा रफीआबाद के तहत होने वाले इन मुकाबलों में 36 टीमों समेत 432 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इधर दूसरी जानिब सोपोर पुलिस के जेर एहतमाम नशा मुक्त अभियान के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कस्बा सोपोर के स्कूलों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का आगाज रंगारंग तकरीब के साथ किया गया। टूर्नामेंट की इब्तदाई तकरीब पर कस्बा सोपोर से वाबस्ता कई आला अफसरान ने शिरकत करते हुए नौजवान खिलाड़ियों को नशे से होने वाले मुजर असरात से आगाह किया। टूर्नामेंट के इब्तदाई मुकाबले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर का मुकाबला सेनेटोरियम पब्लिक स्कूल सोपोर से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर ने मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। टीम की जानिब से दानिश शफी ने 46 और बट अदनान ने 37 रन की पारी खेली। 194 रन के हदफ के ताकुब में सेनेटोरियम पब्लिक स्कूल सोपोर की पूरी टीम महज 54 रन पर ही सिमट गई। यूं इस मुकाबले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर ने 140 रन की वाजिया फर्क से कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में MET पब्लिक स्कूल सोपोर का मुकाबला SRM वेलकन से हुआ। इस मुकाबले में MET पब्लिक स्कूल की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी और पूरी टीम महज 47 रन पर सिमट गई। SRM वेलकन की जानिब से शाहिद लोन ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की। जवाब में SRM वेलकन ने 48 रन का मतलूबा हदफ 8वें ओवर में महज 3 विकेटों के नुकसान पर उबूर किया। इधर दूसरी जानिब बारामूला के प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम में 12

0: बारामूला डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जेर एहतमाम वुमेन्स क्रिकेट कप का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में वादी बर से ताल्लुक रखने वाली 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कुपवारा रॉयल स्टार्स का मुकाबला कश्मीर नाइट्स से हुआ। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कश्मीर नाइट्स टीम ने मुकर्र ओवर्स में 99 रन बनाए। टीम की जानिब से मुबीना अली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में कुपवारा रॉयल स्टार्स की पूरी टीम 72 रन पर सिमट गई। यूं वुमेन्स क्रिकेट कप का खिताब कश्मीर नाइट्स की टीम ने 27 रन की जीत के साथ अपने नाम किया। आखिर पर एक इनामी तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कई आला अफसरान ने शिरकत करते हुए मुश्तरका तौर पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फाइनल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मिदहत को एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने वाली टीम कश्मीर नाइट्स को खूबसूरत ट्रॉफी के साथ साथ 22,000 रुपए नकद, जबकि रनर अप टीम कुपवारा रॉयल स्टार्स को 20,000 रुपए नकद इनाम के बतौर दिए गए। इधर दूसरी जानिब सोपोर पुलिस और सोपोर मीडिया एसोसिएशन ने मंशियात मुखालिफ अभियान के तहत एक रोजा क्रिकेट मैच का इनेकाद दुआबगा मैदान में किया। इस मौके पर SSP सोपोर इफ्तिकार तालिब और ADC सोपोर शब्बीर अहमद रैना ने मुआशरे से मंशियात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उनका मजीद कहना था कि खेलों की सरगर्मियां और आगाही प्रोग्राम नौजवानों की सेहतमंद और मजबूत मुस्तकबिल की रहनुमाई में अहम किरदार करते हैं। दुआबगा सोपोर ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में हायर सेकेंडरी स्कूल दुआबगा ने सोपोर मीडिया एसोसिएशन के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए कामयाबी हासिल की, जबकि पट्टन, हदीपोरा, नारवाव शीरी और जैनगीर सोपोर के मुख्तलिफ मैदानों में खेल सरगर्मियां शदोमद से जारी है।
1: बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान अब मुसलसल दूसरी मरतबा सीरीज की हार से बचने के बारे में ही सोच सकता है। बांग्लादेश में मुनक्किद 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 104 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ये बांग्लादेश की अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी थी। ताहम पिछले 3 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों मुसलसल हार का सामना करना पड़ा है। वाज़ह रहे कि दोनों ममालिक के माबैन इससे कबल 2024 में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेली गई थी। उस सीरीज के दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। उस बार भी बांग्लादेश ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच जीतने बल्कि सीरीज जीतने का तारीखी कारनामा भी अंजाम दिया था। मौजूदा सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के करीबन सभी तजुर्बेकार बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। बल्लेबाजी में अगर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिली तो वो थी पाकिस्तान के 2 डेब्यूटेंट्स की जानिब से। आजान अवैस ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, जबकि अब्दुल्ला फजल ने उस इनिंग्स में 60 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग्स में आजान अवैस ने 15 जबकि अब्दुल्ला फजल ने 66 रन बनाए। ये बात इन एदाद शुमार से मजीद वाज़ह हो जाती है कि पाकिस्तान ने पूरे मैच में कुल मिलाकर 549 रन स्कोर किए। 549 में से इन 2 डेब्यूटेंट्स का मजमूई हिस्सा 244 रनों का था। इमामुल हक, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग्स में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन दूसरी इनिंग्स में ये तीनों पूरी तरह से नाकाम हो गए। सऊद शकील और कप्तान शान मसूद मैच की दोनों इनिंग्स में नाकाम दिखाई दिए। नाकिस बल्लेबाजी और कई अहम फैसलों के बायस पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद शायकीन क्रिकेट की बेहद तनकीद की जद में आए हैं। बतौर कप्तान शान मसूद को 15 में से 11 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के शुरू होने में अब 1 महीने से कम वक्त बचा है। दुनिया के अजीम फुटबॉलर्स वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख के तनाजुर में इस सिलसिले की कड़ी के तहत आज के प्रोग्राम में हमारे साथी जावेद परे बात कर रहे हैं हंगरी के अजीम फुटबॉलर फेरिंक पुष्कस के बारे में।
2: 1930 की दहाई के अवाइल की बात है, किश्पेस्ट हंगरी में एक छोटा सा बच्चा अपने 8 दूसरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने में मसरूफ था। ये बच्चा बड़ा होके अपनी आप बीती सेल्डम बूट्स ऑफ एनी काइंड में लिखते हैं कि उन दिनों उनके पास जूते नहीं होते थे, लिहाजा जो भी मिलता उसे लगाकर मैदान की तरफ निकल पड़ते। इसी आप बीती में ये खिलाड़ी इस बात का भी खुलासा करता है कि एक मरतबा उनके यहाँ एक कौमी सतह का फुटबॉल मुकाबला होना था। उनके पास मैच देखने के लिए पैसे बिल्कुल ना थे, तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने मकामी कसाई की बिल्ली ही चुरा ली और उसे बेचकर उन पैसों से टिकटें खरीद ली और मैच से लुत्फ अंदोज हो गए। बचपन में काफी अरसे तक बिना जूतों के खेलने वाले ये खिलाड़ी आगे चलकर आलमी सतह पर ऐसी शोहरत

0: आगे कि जिसकी तमन्ना हर कोई फुटबॉलर करता है, लेकिन ऐसा मकाम बहुत कम खिलाड़ियों के हिस्से में आता है। ये खिलाड़ी हैं हंगरी के आज तक के सबसे अजीम फुटबॉलर फेरेंक पुष्कस। पुष्कस ने 40, 50 और 60 की दहाई के पुराशोब दौर में फुटबॉल में वो अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। अपने पूरे करियर में इस खिलाड़ी ने 629 क्लब मैचेस में 625 गोल स्कोर किए हैं। आलमी सतह पर उन्होंने जो 85 मैचेस खेले हैं उनमें 84 गोल बनाए हैं। यूं उनका फी मैच गोल औसत 0.99 गोल है। फेरेंक पुष्कस इब्तिदा में किश्पेस्ट क्लब की तरफ से खेलते थे। 1949 में इस क्लब को हंगरी की वजारत दिफा ने अपना लिया। यूं ये टीम हंगरी आर्मी की टीम बन गई और इसका नाम ब्यूडापेस्ट हॉनवेड रखा गया। पुष्कस के जादुई खेल ने हॉनवेड को 5 लीग टाइटल जितवाए। उनकी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। उनके खेल से मुतासिर होकर हंगरी की हुकूमत ने उन्हें आर्मी मेजर बना दिया और अपनी चुस्ती व फुर्ती की वजह से उन्हें आज भी गैलपिंग मेजर के खिताब से याद किया जाता है। पुष्कस और उनकी टीम को वो हाइप दी गई कि सारा हंगरी अपने फुटबॉलर्स और खास तौर पर पुष्कस को जुनून की हद तक चाहने लगी। हंगेरियन टीम ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी न छोड़ी। पुष्कस की क़यादत में इस टीम ने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर इंग्लैंड की टीम को वेम्बले के उस मैदान पर शिकस्त दी जहां इंग्लैंड कभी नहीं हारा था। पुष्कस ने मैच में कई गोल दागे। पुष्कस और उनकी टीम फतूहात पर फतूहात हासिल करती गई। कामयाबियों का ये सिलसिला 4 साल तक मुसलसल जारी रहा और इस दौरान टीम ने एक भी मैच नहीं हारा। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ये टीम फेरेंक पुष्कस की क़यादत में 1954 का आलमी कप खेलने आई। हंगरी की पूरी अवाम और हुकूमत को यकीन था कि इस मरतबा उनसे कप कोई नहीं छीन सकता। अपने पहले ही मैच में हंगरी ने जनूबी कोरिया को 9-0 से रौंद दिया। कप्तान पुष्कस ने 2 गोल स्कोर किए। उसके बाद मुकाबला था मगरबी जर्मनी के साथ। पुष्कस ने यहाँ भी 2 गोल बनाए और हंगरी 8-3 से फाते रहा। लेकिन यहाँ मगरबी जर्मनी के कोच ने एक चाल चली। उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर को मैच में नहीं खिलाया, महज इस वजह से कि इन खिलाड़ियों को बाद में सरप्राइज पैकेज के तौर इस्तेमाल किया जाता। हंगरी इस खुशफहमी में रहा कि शायद जर्मनी की टीम उनके सामने दूसरे दर्जे की टीम है। हंगरी के लिए एक और बदकिस्मती रही कि जर्मनी के खिलाफ मैच में पुष्कस बुरी तरह जख्मी हो गए। ताहम उनकी अदम मौजूदगी में इस टीम ने क्वार्टर फाइनल में ब्राजील को और फाइनल में यूरोगॉय को मात दी। अब फाइनल में मुकाबला फिर से मगरबी जर्मनी के साथ था। अनफिट पुष्कस जब मैदान में उतरे तो हंगरी के शायकीन की जान में जान आई। मैच 6 मिनट में ही पुष्कस ने उम्दा गोल स्कोर करके टीम को 1-0 की लीड दिला दी। 2 मिनट बाद हंगरी ने एक और गोल बनाकर 2-0 से बर्तरी हासिल की। लेकिन उसके बाद वो हुआ जो वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में आज तक का गालिबन सबसे गैर मुतवक्का कमबैक था। महज 18 मिनट तक पहुंचते जर्मनी ने दोनों गोल उतार दिए। फिर 84वें मिनट में जर्मनी ने एक और गोल दाग कर स्कोर 3-2 कर दिया। हंगरी की तरफ से उनके कायद फेरेंक पुष्कस ने आखिरी लम्हात में गोल तो स्कोर कर दिया लेकिन वो ऑफसाइड करार दिए गए और यूं हंगरी 1954 के वर्ल्ड कप का वो फाइनल 3-2 से हार गया। हार इस कदर नाकाबिल बर्दाश्त थी कि पूरा हंगरी गम के समंदर में डूब गया। इस हार ने हंगरी की सियासत में भी आने वाले वक्त में एक भूचाल सलाया। मामला यहां तक बढ़ा कि हंगरी में एक इनकलाब बरपा हुआ। पुष्कस को हंगरी छोड़ना पड़ा। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की रह ली और फिर स्पेन की शहरियत इख्तियार कर ली। 1962 के आलमी कप में ये खिलाड़ी स्पेन की तरफ से आलमी कप में शरीक हुए, लेकिन उनकी टीम को पहली राउंड में ब्राजील के खिलाफ शिकस्त हुई और यूं इस अजीम खिलाड़ी का वर्ल्ड कप करियर अपने इख्तिताम पर पहुंचा।
1: आज के स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
2: स्पोर्ट्स टाइम। सविन, आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे एजाज नाजगी, मॉविन परवीना नबी, पेशकश

0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ رات کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ اب آکاش وانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
1: نمسکار، آکاش وانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں لولین نگم۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
4: टुडे द विजिट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर

0: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
3: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार

0: सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत

0: प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। रात के 9 बज चुके हैं। आइए अब से लेकर 9:15 तक समाप्त करते हैं चंद फिल्मी नगमे।

0: करने पर भी समझौता हुआ। अबुधाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बाज़ाब्ता खैरमकदम किया गया। इस मौके पर सदर अन्नयान बज़ात खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एग्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज़ को तकवियत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमायां अंदाज से फ़रोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदऊ किया। ब्रिक्स के वज़राए खारजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तई अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज़ में ज़्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक़वामी और कसीर रुखी निज़ाम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इन वज़ीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इक़दामात पर ज़ोर दिया। इन वज़ीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की ज़रूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़राए खारजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज और आबो हवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तई अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वज़ीरों ने आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती, इश्तराक और पायदार निज़ाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की सदारत के तहत तरजीहात की काफ़ी सताइश की और अपनी हिमायत का इजहार किया। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर जहती के हदफ की जानब पेशकदमी में अपने सभी शराकत दारों के साथ काम करने के तई अहद बस्ता है। ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग 2026 के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में एक आम इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग की वसत इस अहम बात की जानब इशारा करती है कि तेज़ी से बदलती दुनिया में सभी रहनुमा कसीर जहती तआवुन को मुस्तहकम करने से वाबस्ता हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मीटिंग के तनाजुर में ईरान, मलेशिया, युगांडा और क्यूबा के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि भारत मगरबी एशिया में क़याम अमन के लिए और ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब अराकची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान सभी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुरमुज से होकर गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। जनाब अराकची ने कहा कि आबनाए हुरमुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया बहरान का मुजाकरात के जरिए तस्फिया करने के सिवा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ईरान के वज़ीर खारजा ने कहा कि ईरान भारत के किसी भी तरह के तामीरी रोल का खैर मकदम करेगा। जनाब अब्बास अराकची ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक होने से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों के मामले में कलीदी सरगाना को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद सरगाना PV कुलकर्णी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। PV कुलकर्णी केमिस्ट्री मजमून का लेक्चरर है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहान के अमल में शामिल था। उसे सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमीन में 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। CBI ने कहा है कि सभी 5 मुलजिमीन को दिल्ली में मुतल्लिका अदालत में

0: पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें तफ्तीश के लिए 7 दिन के पुलिस तहवील में ले लिया गया। नीट यूजी 2026 सवालिया पर्चा लीक मामले में दीगर कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ और मजीद कार्रवाई जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में पुट्टपार्थी के मकाम पर जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारा प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि नए शुरू किए गए दिफाई प्रोजेक्टों से कौमी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी, सनअती तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया

0: केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के 9:30 हुए हैं।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: हेलो रेडियो किल्ले वली बोजो सेहत मुतलिक फोन इन प्रोग्राम। हेलो रेडियो क्लिनिक
4: सामईन आदाब। हेलो रेडियो क्लिनिक प्रोग्राम का ताज़ शुमार है 600 खत्म हाजिर। सामईन तुम सेहत जम प्रोग्राम किस हर शुमारस मे मुख्तलिफ अमराजन मुतलिक कत करान। सोन अजुक मौजू छु जवानन हिंद जोड़न हिंद तकलीफ। क्या वजह छु कि जवानन छु वारिया लक्ष उम्र मज जोड़न हिंद तकलीफ गछान? कमन जोड़न हिंद तकलीफ छु ज्यादा पहमत सानी कशीर मज बासान? ते वजह क्या छु, तकलीफ किस पर हेको दूर करित? तो अत पर कत करने खातिर आज स्टूडियोस में साल अनमित डॉक्टर आसिफ नजीर बाबा साहब, यम एसोसिएट प्रोफेसर छ ऑर्थोपेडिक। डॉक्टर साहब तुहन सेठा सेठा इस्तकबाल प्रोग्राम में
5: शुक्रिया तबरेज साहब।
4: डॉक्टर साहब गोडन जस जानू कि जवानन में जोड़न हिंद तकलीफ, ये छु मतलब पानवन अख सु कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस
5: मुजाद बासन की के जमालन के,
4: तो ये क्या मतलब अत पर
5: तबरेज साहब? अस कर आज तम वाले लेटन प्रोग्राम ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑक्सी के जोड़न तकलीफ से गसन बुजरस मन। मगर अगर अस वो जवानन मज तो वारिया के तकलीफ आसन यम के जोड़न मज गसान छ। अगर ऑर्थोपेडिक कुन तो तकलीफस मज ब्रॉडली करन यम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स, यत मज के आ ग्रुप छ आसन तिम तकलीफ यम जन पेठे छ आसन यत कंजनिटल छ मन राइट फ्रॉम बर्थ छ आसन कंस का प्रॉब्लम सो एक पत के टाइम वक्त मैनिफेस्ट या से ब्रोंख कुन ते मैनिफेस्ट के। ब्याह किस्म तकलीफ छ आसन यत डिजनरेटिव छ वारन यत वेयर एंड टियर छ मन। त्रेम तकलीफ छ आसन यत इस वनो इन्फेक्शन छ आसन। बेश आसन ब्याह किस्म तकलीफ इन्फ्लेमेटरीज यत मस के वारम छ खसन जोड़स मसन। तो फाइनल तकलीफ अक्ष ट्यूमर सन मसन। अगर इस यम सरी तकलीफ कुछ हो यम सरी तकलीफ है के जवानन कुन ते वक्त गसे। अख तकलीफ छ आसन अगर इस जवानन हस कात करो, अगर इस गोनी छी कात करो तिम का तकलीफ यम जन पठे छ आसन। कंस कंस बचन छ आसन यत वन हिप डिजनरेटिव हिप डिजीज़ या DDH यत वन डिस्प्लास्टिक हिप्स हिप हिप जॉइंट अड़ पानी इन दरमियान जोड़ बन नॉर्मली अड़ी जॉइंटस मज बराबर फसित तो मूवमेंट ग। मगर अक्सर कंस कंस बचस फ्रॉम बर्थ जॉइंट नबर अख जॉइंट नबर अगर ये अक तरफा जॉइंट सह बसान ओबियस पेरेंटसन कि बचस थोड़ा सा लिम्प बसान हम पक ठीक पे। मगर अगर यह बायलैटरल दोशवे साइड आज या माइल्ड वेरिएंट अमुक यहां जॉइंट कम्प्लीटली नबर नबर तुम क्या मगर पन्ने पुशन मे एग्जैक्टली क्या तुम हम ब्रोह कर प्रेजेंट। अगर वो वेस्टस मैं ये कहान स्क्रीनिंग कर सारे बच्चन एट द टाइम ऑफ बर्थ कैचन एबनॉमलिटीजन खुद ये अख एबनॉमलिटी ये CDH वन ब्रो आज वन DDH अगर ये डायग्नोज गो एट बर्थ कह बच्चे ब्रोह कुन पे अस नश एट द एज ऑफ 30s 25 पेन कर जॉइंटस मन सकम आई पे अड़ेन बच्चन जॉइंटस मन डिसलोकेशन गम जॉइंटस हजर राइट फ्रॉम बर्थ तुम हम प्रेजेंट कर लेटर एज मन यह स्पेसिफिक ये तादाद मगर तूत ज्यादा क्या यह मैक्सिमम तादाद मजन ब्रॉडली कैटेगरीज अच्छा डिजनरेटिव डिजीज डिजनरेटिव गई वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर हे गुन जॉइंटस मगर वेयर एंड टियर ग अस नीचे कॉन्सेप्ट आ कि वेयर एंड टियर ग एट लेट एजेस। मगर अगर अस जॉइंट ज्यादा मिस यूज करो यूज नहीं मिस यूज करो सू कर प्रेजेंट एट एन अर्ली एज आल्सो सू हे यंग एज मज प्रेजेंट कर आज कल अस अगर अस नो बॉडी मजन एस्पेशली यथ जॉइंट ज्यादा मूवमेंट तुम कॉमन तुम आज कल अस मोबाइल यूज ज्यादा मोबाइल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

देखिए, आपका जी किधर गया ये तो आप ही जाने, लेकिन ये जो जी है ना, इसे जरा संभाल कर रखा कीजिए, क्योंकि सबके प्यार की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके दिल की क्या परिभाषा है ये तो आप ही जाने। मेरा अपना मानना है कि जैसा जिसका दिल वैसा उसका प्यार, और जैसी जिसकी फितरत वैसी उसकी मोहब्बत। प्यार गलत नहीं होता प्रिय, परिभाषाएं गलत हो जाती हैं। वैसे मोहब्बत पर मुझे बहुत ही प्यारा गीत याद आता है, फिल्म किस्मत का। आइए आप भी सुनिए।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म ये हम नहीं जानते। बस इस दास्तां में हम उलझे रहते हैं और उलझे रहते हैं मेरे दिन और रात। देर तक रोशनी रही कल रात, मैंने ओढ़ी थी चांदनी कल रात। कल रात यादों की आगोश में सो गई, फिर भी आज की रात में है बाकी सी कल रात। ये आती जाती रातें जाकर भी कुछ कुछ चिपकी सी रह जाती हैं, थोड़ी खिड़की से, थोड़ी पर्दे से, थोड़ी सिरहाने से, और याद बनकर महकती रहती हैं। फिर जब अगली रात लौट कर आती है ना, तो फिर पूछती है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम।

0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत के सफर पर आज मैं हूँ आपके साथ कुसुम। किसी ने क्या खूब लिखा है कि इश्क को एक उम्र चाहिए और उम्र का कोई एतबार नहीं। लेकिन उम्र को दरकिनार करते हुए साहिल लुधियानवी साहब क्या खूब लिखते हैं फिल्म वक्त में, आइए हम सभी सुनें।

आपको पता है जोहरा जबी का मतलब? जी, जोहरा जबी का जो मतलब होता है वो होता है बहुत खूबसूरत चेहरे वाली, और जो ग्रह है शुक्र ग्रह उसकी तरह मतलब चमकते माथे वाली जो महिला होती है, सुंदर चेहरे वाली, उसे ये कहा गया है जोहरा जबी। वैसे तुझ पे कुर्बान मेरी जान कहना कितना आसान है ना, काश कि इतना आसान होता निभाना भी। कहने वाले तो क्या क्या कह जाते हैं, देखिए अगले गीत में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं। आइए हम सभी

फिल्म मिलन का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से गीता दत्त की आवाज में।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

0: एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit from 15 to 17 May, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their majesties, the King and the Queen. Today, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI,

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

अंधा कानून फिल्म का गीत आपने सुना, आशा भोसले और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शनिवार की छुट्टी के वो सुकून भरे पल जब घर की दीवारें भी जैसे अपनापन महसूस कराने लगी हैं, न भाग दौड़ न किसी काम की जल्दबाजी, बस आराम से बीतते हुए पल और मन को हल्का कर देने वाला सुकून।

जानी दुश्मन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई घर में सुकून से बिताया गया वीकेंड पूरे हफ्ते की थकान उतार देता है। कुछ पल आराम, अपने लोगों का साथ, मनपसंद गीत और बिना किसी जल्दबाजी के बीतता दिन, यही तो असली राहत है। ऐसा लगता है जैसे भागती हुई जिंदगी थोड़ी देर के लिए ठहर गई हो और दिल धीरे से कह उठे, अब चैन मिला।

चोर पुलिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, इसे लिखा निदा फाजली ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। शनिवार का दिन जब घर में सुकून से बीतता है तब महसूस होता है कि थकान सिर्फ शरीर में नहीं मन में भी जमा हो जाती है। पूरे हफ्ते की भागदौड़, जिम्मेदारियां, समय की चिंता और हर पल कुछ न कुछ सोचते रहने की आदत, इन सब के बीच इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। फिर आता है ऐसा शांत सा दिन जहां सुबह की चाय जल्दी जल्दी नहीं पी जाती, जहां घड़ी बार बार नहीं देखनी पड़ती, जहां मन करे तो पुराने गीत सुन लो, मन करे तो बस खामोशी से बैठे रहो। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा सुकून अपने घर के एक शांत कोने में बैठकर बिना किसी चिंता के बस चैन से सांस लेने में होता है।

फ्री लव फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 50 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। सच में अच्छे गीतों में एक अजीब सी ताकत होती है। बाहर चाहे कितनी भी घनघोर गर्मी क्यों ना हो, लेकिन मनपसंद गाने कानों में पड़ते ही माहौल कुछ हल्का लगने लगता है। गर्म हवाएं और थका देने वाला मौसम, इन सब के बीच जब कोई सुरीला गीत बज उठे तो जैसे मन को ठंडी छांव मिल जाती है। कभी पुराने मधुर गीत, कभी हल्के फुल्के मुस्कुराते नगमे, तो कभी दिल को छू लेने वाली धुनें। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि मन को राहत भी देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे गाने हमारे मूड को समझते हों। थके हुए दिन में वही गीत थोड़ी ताजगी दे जाते हैं। उदासी में मुस्कुराते हम मुस्कुराने से लगते हैं और गर्मी से चिड़चिड़ाए मन को भी ये गीत शांत कर देते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। पुराने गीतों की बात ही कुछ और है, उनके शब्द, उनकी धुन और उनकी सादगी दिल को छू जाती है। वो सिर्फ कानों में नहीं बजते, सीधे दिल में उतरते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ गीत मौसम नहीं बदलते, लेकिन मौसम सहने की ताकत जरूर दे देते हैं। और सच कहें तो गर्मी की लंबी थकाऊ दोपहर और रात, अगर इस समय अच्छे गीतों का साथ मिल जाए तो ये गर्मी के दिन बिताना आसान हो जाए।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:59 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक

0: ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनल पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पहले महीने में पुलिस ने 806 लोगों को गिरफ्तार किया और 724 मामले दर्ज किए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his five-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their Majesties the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recently attacks on UAE. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Anita Orban for her appointment as the Deputy Prime Minister and Foreign

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

आराम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

ठोकर फिल्म से आपने ये गीत सुना तलत महमूद की आवाज में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ये वो एहसास है जब दिल में इतनी बातें हों कि शब्द भी साथ छोड़ दें। कभी यादें बेचैन करती हैं, कभी खामोशी, और ऐसे में पुराने गीत जैसे हमारे दिल की तरफ से बोलने लगते हैं। रात तन्हा हो, हवा चुप हो और कोई पुराना नगमा धीरे से बज उठे तो दिल अपने सारे राज खुद ही सुनाने लगता है।

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, दिल अपने आप किसी की तरफ खिंचता चला जाता है और इंसान बस महसूस करता रह जाता है। कभी ये सुकून बन जाती है, कभी एक मीठी सी बेचैनी। फिर भी लोग मोहब्बत से दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ एहसास दर्द देकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं।

फुटपाथ फिल्म का गाना आपने सुना। इसमें अली सरदार जाफरी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। शामे गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा आ भी जा आज मेरे सनम।

इस गीत में इंतजार, उदासी और मोहब्बत तीनों एक साथ महसूस होते हैं। ढलती शाम, खामोश फिजा और किसी अपने की कमी। कुछ पुराने गीत सिर्फ चुने नहीं जाते, इनको जिया जाता है, समझा जाता है और महसूस किया जाता है।

दिले नादान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 9 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने।

मोहर फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ यादें दिल को सुकून देती हैं और कुछ चुपके से दर्द से भी गहरा दर्द देती चली जाती हैं, लेकिन दिल के करीब होते हैं उनकी याद कभी पुरानी नहीं होती।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। खावर जमा ने इसे लिखा और संगीत दिया जिमी ने। सूनी सी राहों में तेरी याद का मौसम, हर मोड़ पे लगता है कि तुम मिल ही जाओगे। दिल आज भी चुपके से यही कहता है, कुछ दूर नहीं हो तुम, बस आवाज दो तो चले आओगे। कितनी ही दफा चाहा कि भूल जाएं तुम्हें, लेकिन ये दिल हर बार तुम्हारा नाम ले बैठता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिछड़कर भी हर धड़कन में साथ निभाते रहते हैं।

ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आपने ये गाना सुना। आशा भोसले की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। मोहब्बत सिर्फ मुस्कुराहटों का नाम नहीं, कभी इंतजार, कभी तन्हाई, कभी अनकही बातों का सिलसिला भी है। फिर भी लोग इस राह पर चल पड़ते हैं, क्योंकि दिल को एक उम्मीद हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा जो हमारे जज्बात समझ लेगा।

लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। इतना तो मुझसे ना प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कभी इस शहर कभी उस राह गुजरता हूँ, अपने ही ख्यालों में कहीं खोया रहता हूँ। मेरे पास ठहराव का कोई घर नहीं, बस यादों की धुंध है और तन्हा सफर। लेकिन जब तुम्हारा जिक्र होता है, ये भटकता मन कुछ पल को ठहर जाता है। लगता है जैसे सूनी शाम में दूर कहीं कोई दीपक जल उठा हो।

किनारे किनारे फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। न्याय शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसी ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिला

0: आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। रात सुरमई हो और साथ में सुरीले गीत हो तो जैसे थका हुआ मन भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। खामोश रात, हल्की ठंडी हवा और कहीं दूर बजता कोई पुराना नगमा, बस यही पल दिल को सुकून से भर देते हैं। ऐसी रातों में यादें भी मीठी लगती हैं, बातें भी धीमे धीमे दिल में उतरती हैं और वक्त जैसे कुछ ठहर सा जाता है।

राजपूत फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, एक ऐसा एहसास जहां इंसान कहीं भी चला जाए कुछ यादें उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। भीड़ हो या तन्हाई, दिल के किसी कोने में कोई पुरानी आवाज, कोई मुस्कुराहट, कोई अधूरी बात साथ चलती रहती है। कभी ये यादें सुकून देती हैं तो कभी चुपचाप आंखें नम कर जाती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 27 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी बातों की जरूरत नहीं पड़ती। दिल अपनी सबसे गहरी बात अक्सर बहुत सादगी से कह देता है। कभी किसी की मौजूदगी सुकून बन जाती है, कभी उसकी यादें खामोशी में भी साथ चलती रहती हैं। मोहब्बत का रंग भी अजीब होता है, उसमें शिकायतें भी होती हैं, इंतजार भी। दो लफ्जों में कही गई बात कभी कभी पूरी उम्र की दास्तान बन जाती है।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतनी खामोशी से आते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब अपना दिल हार बैठे। फिर उनकी हंसी में अपना सुकून मिलने लगता है, उनकी आवाज दिन भर की थकान मिटा देती है और उनकी यादें हर खामोश पल को भर देती हैं। मोहब्बत शायद दिल चुराने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल में इतनी गहराई से बस जाने का एहसास है कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगे।

डॉन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

जवानी जाने मन 1982 की फिल्म नमक हलाल का एक बेहद लोकप्रिय और मस्ती भरा गाना है। इसे आशा भोसले ने गाया, संगीत बप्पी लाहिरी का था और इस फिल्म में परवीन बाबी की स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और यादगार बना दिया था। इस गाने में 80 के दशक की डिस्को धुन, चुलबुलापन और चमकती हुई फिल्मी दुनिया का पूरा रंग दिखाई देता है। जवानी जाने मन सुनते ही वही पुराना दौर, जगमगाते सेट और बेफिक्र मस्ती याद आ जाती है।

अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद अर्चना सचदेवा होंगी आपके साथ लेकर प्रोग्राम हमराही। इसी के साथ राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार

0: करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लिबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम की अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Chetten and to call on their Majesties, the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Almost free, open or safe. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. Ministry of Finance has notified about it. The special additional excise duty on diesel exports have been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel ATF has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight beginning today. There has been no change in the existing excise duty rates for petrol and diesel for domestic consumption. Advocating for greater transparency in the West Bengal Assembly, Chief Minister Shivendu Adhikari called for live broadcast of question hour, debates, bills and budgets. He said, people of the state have every right to see what the elected members

रात के 3:11:15 हुए हैं। हम राही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है जो शब्दों से परे है, और जब किसी से प्यार हो जाता है तो स्थिति कुछ ऐसी सी हो जाती है।

गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में फिल्म जिद्दी से अभी आपने गीत सुना। आंखों से दूर है पर दिल के पास है, आंखों से दूर है पर दिल के पास है, जिंदगी के सफर में तू ही एक खास है, तुमसे कब मुलाकात होगी बस यही एक आस है।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में फिल्म जौहर महमूद इन गोहा से अभी आपने गीत सुना। हमारे दास्ताने इश्क का बस इतना ही फसाना है, हमारे दास्ताने इश्क का बस इतना ही फसाना है, एक मीठा सा दर्द है और एक बेनाम जमाना है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म तीसरा कौन से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में।

दिल दिया है तो निभाना भी जरूरी है, दिल दिया है तो निभाना भी जरूरी है, यूं ही किसी को अपना बनाना भी जरूरी है। वफा की राह में हर मोड़ पर मुस्कुरा कर साथ चलना भी जरूरी है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जमी आसमां से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 19 कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यादों की बारात से अभी आपने गीत सुना। तुम्हारे साथ ने ही तो जिंदगी को सजाया है, तुम्हारे साथ ने ही तो जिंदगी को सजाया है, मैंने तुमको अपना और तुमने मुझे अपना बनाया है। ना जाने कितना प्यार है तुमसे कि अब तो हर धड़कन में बस तुम्हारा ही साया है।

0: तुझे क्या मालूम।
1: आयशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म वीर भीमसेन से अभी आपने गीत सुना, तुम्हारा इश्क ही काफी है, तुम्हारा इश्क ही काफी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है, जहां कहीं भी मिलो मिल के मुस्कुरा देना, खुशी के वास्ते ये सिलसिला ही काफी है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सच्चा झूठा से ये गीत।
2: यूं ही तुम मुझसे

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म फर्ज से ये गीत आप सुन रहे हैं। इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगतोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगतोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदे

ईश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के इस बेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन एक नया सवेरा होता है और जिंदगी में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, फिर भी हमेशा खुश रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

के जे येसुदास की आवाज में अपने पराये फिल्म से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो उसमें किसी को भी झुकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस प्यार में समर्पण है और जहां समर्पण की भावना हो वहीं पर प्रेम है।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, रिश्तों में अगर मतलब आ जाता है तो वो रिश्ते हैं ही नहीं, वो रिश्ते बस सिर्फ नाम के ही हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, चितचोर फिल्म से केजे येसुदास की आवाज में।

दोस्तों, प्रकृति की तो बात ही अलग है। पानी, धरती, नदियां, हवा, पहाड़, आसमां, सभी ही बहुत अच्छे लगते हैं। और जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ के रहेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दूर के राही से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में प्यार ही है जिससे हम किसी के दिल में उतर जाते हैं और प्यार से ही हम किसी दुखी मायूस व्यक्ति को खुश कर सकते हैं।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म क्रांति से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, अब चलने का वक्त भी आ गया है और हम चाहते हैं कि आप जहां भी हों हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार, परंतु उससे पहले हमारी अंतिम पेशकश आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म उपकार से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने उनकी अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह का समय भक्ति और शांति के लिए तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस आनंदमय भजन से, जो गाया है अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने।

दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में भजन सुन के आपको जरूर आनंद आया होगा। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बेकसूर से।

दोस्तों, जिंदगी का ये सफर हंसते हंसते कट जाए तो क्या बात है। और अगर कोई भी परेशानी हो परंतु फिर भी आप खुश रहते हैं तो वो परेशानी भी झट से दूर हो जाएगी।